सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इसमें स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 और 55 सेकेंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी विचार।
1: प्रेम ढाई अक्षर का यह शब्द ईश्वर का दिया एक ऐसा वरदान है, एक ऐसी भावना है जो बिना किसी शर्त के, किसी अपेक्षा के और स्वतः उत्पन्न होने वाला एक नैसर्गिक गुण है जिसे सीखना नहीं पड़ता। एक सहज और प्राकृतिक एहसास है जो हर इंसान के दिल में होता है। इसलिए कहते हैं, प्रेम न बारी उपजई, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेही रुचई, शीश देई ले जाई। प्रेम एक छोटा सा शब्द है, परंतु इसका अर्थ अथाह है। भिन्न भिन्न रिश्तों में प्रेम के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी रिश्ते विशेष से हो, परमात्मा से हो, प्रकृति से हो या किसी जीव से हो, प्रेम को जिया तो जा सकता है, परंतु शब्दों में बताया नहीं जा सकता। सदियों से दार्शनिक, विद्वान, प्रबुद्ध विचारक प्रेम के विषय में लिखते आ रहे हैं। अन्य महापुरुषों की तरह प्रेम के प्रभाव, महत्व और जीवंतता को स्वीकारते हुए गांधी जी ने भी प्रेम संबंधी अपने विचार दिए, जो उल्लेखनीय है। प्रेम का आधार समानता और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की व्याख्या करके गांधी जी ने इसके व्यवहारिक पहलू में एक नया आयाम जोड़ा। उनके विचार में प्रेम में सत्य निःशर्त व्याप्त होता है, इसलिए यह असीम हो जाता है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में सच्चा प्रेम सागर के समान असीम है और भीतर उमड़ता घुमड़ता हुआ फैलता है और चारों सीमाओं को पार करते हुए पूरे विश्व को अपने आलिंगन में ले लेता है। उनका कहना था, बिना सत्य के प्रेम अंधा है और बिना प्रेम के सत्य कठोर है। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा वास्तव में प्रेम का ही क्रियात्मक रूप है। उनके अनुसार प्रेम और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और प्रेम कोई कायरता नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और विश्व शांति का आधार है। उनका मानना था कि सेवा तभी संभव है जब वह प्रेम से जुड़ा हुआ है। बिना सेवा के प्रेम अधूरा है और बिना प्रेम के की गई सेवा बोझ है। की गई सेवा को व्यक्तिगत संबंधों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसे असहाय, निर्धन और जरूरतमंदों की सेवा का भी माध्यम बनाया। गांधी जी के प्रेम संबंधी विचार सेवा और त्याग की भावना पर आधारित है। उन्होंने कहा था कि सच्चा प्यार सदैव त्याग मांगता है, क्योंकि प्रेम लेने में नहीं देने में है। और जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं तभी हमारे भीतर प्रेम और त्याग की प्रवृत्ति जागृत होती है। प्रेम को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने प्रत्येक मनुष्य का एक दूसरे के प्रति आत्मिक प्रेम की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मत था कि आत्मिक प्रेम का मूल आधार जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग भेद आदि से मुक्त प्रेम ही आत्मिक प्रेम है। उनका कहना था कि प्रेम के माध्यम से किसी अपराधी या अत्याचारी व्यक्ति को भी इंसान बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि पाप से घृणा करो और पापी से प्यार, जिससे वे पाप करना छोड़ दे, क्योंकि प्रेम से ही प्रेम उत्पन्न होता है और नफरत पर केवल प्रेम से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। एक आत्मा का सच्चा प्रेम लाखों लोगों की नफरत को बेअसर कर सकता है। गांधी जी ने हमें बताया, प्रेम तब सच्चा है जब वो शत्रु से भी किया जाए। प्रेम ही मानव का सर्वोपरि और अनुपम धर्म है। समस्त मानवों के प्रति प्रेम की अनुभूति आत्मा के विकास की ऊंची अवस्था है, परंतु प्रत्येक जीवधारी के प्रति प्रेम की अनुभूति आत्मा के विकास की सर्वोच्च अवस्था है। यह समस्त संसार प्रेम के नियम से ही चलायमान है, जहां सभी किसी न किसी रूप में आपस में प्रेम बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए जीवंत है। और यदि मानव का मानव के प्रति प्रेम न हो तो वह मृत प्राय हो जाएगा। आज के इस दौर में जहां नफरत और हिंसा बढ़ रही है, गांधी जी के प्रेम संबंधी विचार और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए

0: यदि हम अपने दैनिक जीवन में क्रोध की जगह क्षमा और नफरत की जगह प्रेम को प्राथमिकता दें, तो प्रेम से हम न केवल दूसरों को जीत सकते हैं, बल्कि स्वयं को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गांधी विचार। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए श्रीनिवास सहाय से वार्ता। विषय है पोषण वाटिका के लाभ।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है, उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं, और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका, गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से, जिन सब्जियों से होती है और जहाँ पर उनको हम लगाते हैं, उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियां, कुछ फल और कुछ अनाज, दूध, दही का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साग सब्जियां जो हैं और फल जो हैं, जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं, उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी होते हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार, पसंद इच्छा अनुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी रहती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती है। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए, ताकि इसका प्रबंधन भली भांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जाँच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए, क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं, जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरबी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियाँ लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है, वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर मिट्टी है उसमें ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें।
1: पोषण वाटिका के लाभ, इस विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में

0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर को व्रत और चढ़ावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है।

सबर किया तो अल्लाह ने हर चीज़ अता करने का एक बेहतरीन वक्त रखा है। अल्लाह सबर करने वाले को कभी मायूस नहीं होने देता।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पुरुषों में श्रेष्ठ जो हर परिस्थिति में धर्म मर्यादा और नैतिक आचरण की सीमा का पालन करते हैं, उन्हें शांति प्रिय भी माना जाता है।

धन्य है माता सीता, फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

सीता जैसी पवित्र पतिव्रता आदर्श नारी को फिर से वनवास दे दिया गया और वह भी गर्भावस्था में। अंततः विरह वेदना सहती जानकी ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में दो सुंदर तेजस्वी बालक लव और कुश को जन्म दिया और फिर एक दिन

रामायण की सबसे मार्मिक और गहरी भावनाओं में से एक है सीता का दुख। यह केवल एक स्त्री का वियोग नहीं बल्कि एक महान चरित्र की यात्रा है। रावण की कैद से मुक्त होने के बाद समाज के सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा थी।

हम सुख में मगन रहते हैं, लेकिन जब विपत्तियों से घिर जाते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं और बार बार यही कहते हैं, नाथ मोहे अब की बेरो बारो।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए सुनते हैं रामचरितमानस से पाठ, मुख्य सर भूपेंद्र सिंह का है।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: अनिल कुमार तिवारी।
1: स्वास्थ्य चर्चा सुनने वालों को नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर विद्याभूषण कुमार साहब, जो पटना IGIMS के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और हम इनसे बातें करेंगे डायबिटीज और आंखों की देखभाल के बारे में। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज तो अधिकांश लोगों को हो रहा है, हर 5 में 2-3 लोगों को होता ही है, तो इसके बारे में जरा सुनने वालों को बताएं कि इसका शरीर के विभिन्न अंगों पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन आंखों पर इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ता है।
2: धन्यवाद, एंड सुनने वाले को भी सभी को नमस्कार। सर, डायबिटीज ऐसा है कि अभी बोला जा रहा है कि इंडिया इज़ द डायबिटीज कैपिटल मतलब ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अगर डायबिटीज़ किसी को है तो इंडिया में ही सभी इंडियन पॉपुलेशन का हो रहा है, क्योंकि हम लोग का खान पान रहन सहन जैसा है उसके चलते भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डायबिटीज एक ऐसा एक बीमारी है सर कि पूरे शरीर को ग्रसित करता है, आँख को सबसे ज़्यादा करता है। आँख में जितना भी बीमारी होती है, इसे स्टार्टिंग मतलब शुरू करते हैं अगर सूखापन होना तो उसमें डायबिटीज होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आँख में मोतियाबिंद नॉर्मल अगर आदमी को अगर 60 साल में हो रहा है तो डायबिटीज वाले को 40-45 में ही होना शुरू हो जाता है। पर्दे में सूजन आ जाता है, उसके चलते उनको दिखाई नहीं देता है। तो ये सब बीमारी जो होता है जो टाइप 2 डायबिटीज में होता है, जो वयस्क लोगों को डायबिटीज होता है उनको होता है। बच्चों में भी डायबिटीज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन जो वयस्क लोग हैं जिसको डायबिटीज अगर उनको डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि आपको डायबिटीज है तो तुरंत आँखों का भी चेकअप करवाना चाहिए। वो लोग बताते हैं, जो फिजिशियन है जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलिए, तो उसमें देर नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उनको दिखाना चाहिए और उनको दवाई डाल करके पूरे पर्दे की भी जाँच करनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि डायबिटीज का लक्षण आई में आया है कि नहीं। जनरली देखा गया कि 18 से 20% जो 100 पेशेंट में 100 मैंने व्यक्ति को अगर डायबिटीज है जो डॉक्टर के पास आते हैं तो 18 से 20 व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है जब हमारे पास आते हैं। तो ऐसे कंडीशन है तो बेटर कि जितना जल्दी अगर दिखवाएंगे तो अच्छा होगा सर।
1: तो इसमें नियमित जांच का क्या शेड्यूल रहता है जरा हमारे?
2: नियमित जांच है कि सबसे पहला तो अगर डायबिटीज आपको हुआ है तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए। उसमें ग्रेडिंग क्या हो रहा था हम लोग का डायबिटीज का ग्रेडिंग करके उनको बताते हैं पेशेंट को। जनरली मैक्सिमम है कि उसमें 1 साल पे फिर बुलाते हैं, अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि डायबिटीज के साथ साथ शुगर भी ये ब्लड प्रेशर भी अपना कंट्रोल रखें, और अगर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल रहता है तो 1-1 साल में आप दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति रहते हैं जिनको कि ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया है, पर्दे में चेंज हो गया है, तो उनको हम 6 महीना पे भी बुलाते हैं। तो कम से कम 6 महीना पे, नहीं तो फिर साल भर पे बुलाते हैं सर। इन्हीं को अगर लगता है कि जिस दिन आए, अगर कुछ पेशेंट को है कि तुरंत उनको आँख में सुई देना है तो आँख में कुछ उपचार करना है तो उपचार के लिए बताते हैं, तो हम लोग उसको फॉलोअप पे रखते हैं सर।
1: अच्छा, और डायबिटीज जैसे कि ये तो बढ़ने घटने वाला मर्ज है
2: जी,
1: तो उसको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी, देखभाल के लिए कितना जरूरी,
2: बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों का जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है उन्हीं को ज्यादा आंखों में दिक्कत होती है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। जनरली अगर जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल है, मतलब 200 से नीचे रख रहे हैं, मतलब खाने के बाद या खाने के पहले भी सब कंट्रोल जैसे डॉक्टर बोलते हैं उसके अनुसार से अगर स्टैंडर्ड जो मेंटेन रखते हैं सर, तो उनको 20 साल 25 साल भी अगर रहेंगे डायबिटीज तो उनको डायबिटीज दिक्कत नहीं होता है,
1: आंखों में दिक्कत
2: जी
1: नहीं।
2: लेकिन जिनका फ्लक्चुएशन होता है, जैसे बढ़ रहा है घट रहा है, कभी दवाई ले रहे हैं छोड़ दे रहे हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, तो उनको तुरंत चेक करवाना चाहिए।
1: 6 महीने पे उनको चेक कराना चाहिए।
2: चेक कराना चाहिए
1: तो उसमें क्या क्या चेक कराना चाहिए? आंखों की रोशनी,
2: रोशनी के साथ साथ जो चश्मे की पावर है तो चेक करते ही करते हैं, उससे दवाई डाल करके पुतली को फैला करके हम लोग पर्दे को चेक करते हैं जो रेटिना बोलते हैं, उसमें रेटिनोपैथी का कितना चेंजेज आया है वो देखते हैं सर।
1: तो रेटिनोपैथी में जो पर्दे पे नुकसान जो पहुंचता है उसके बाद मरीजों को क्या दिक्कत होने लग जाती है?
2: धुंधलापन, जो चीज क्लियर दिखता है वो धुंधलापन होना शुरू हो जाता है सर। कभी कभी क्या होता है कि डायबिटीज के चलते आंख में नस फट जाता है, जो ब्लड सप्लाई खून की नली है वो फट जाता है, तो एकाएक जैसे व्यक्ति दिख रहा है अगले दिन ही उसको धुंधलापन होने लगा, दर्द कुछ नहीं होता है, एकाएक बिना दर्द के ही आंख में धुंधलापन आ जाता है। कुछ पेशेंट में होता है कि पर्दे में सूजन हो जाता है, जिसको डायबिटिक मैक्लोडिमा बोलते हैं मेडिकल वर्ल्ड में, तो वो सूजन आता है तो उसके चलते धीरे धीरे ब्लड धुंधलापन होना शुरू हो जाता है। तो या तो एकाएक धुंधला हो रहा है तो भी, नहीं तो धीरे धीरे भी आंख में रोशनी कम रही तो मिल करके चेक करवाना चाहिए सर।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज और आंखों की देखभाल के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। धन्यवाद।
0: मधुमेह और आंखों की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर विद्याभूषण से भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे अनिल कुमार तिवारी। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, मुख्य सर भूपेंद्र सिंह का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर विद्याभूषण से भेंट वार्ता। विषय है मधुमेह और आंखों की देखभाल। भेंट करता है।

प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में आप जानेंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और योग को अपने जीवन शैली में कैसे शामिल करें, साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। और 7:15 पर बज़्म कव्वाली आप सुनेंगे, गायक कलाकार होंगे जफर हुसैन, कव्वाल और साथी।

प्रातः 7:25 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनेंगे पद्मा तलवरकर का गायन, और 10:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुनिएगा परमानंद मिश्रा की आवाज़ में कुछ गीत।

बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे से। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे पारसनाथ मिश्र के स्वर में कुछ भोजपुरी लोकगीत। और दोपहर 12:30 से फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण होगा। विषय है दांतों में कैविटी से जुड़ी समस्याएं, कारण और निदान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर टीना यादव।

शाम 5:30 पर भोजपुरी कार्यक्रम आरती आप सुनेंगे और रात 8:30 पर सुनेंगे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी एट द 90। इसके तहत आरोग्य एवं स्वास्थ्य भारत और आकाशवाणी आप सुनेंगे, प्रस्तुति होगी रुपेश कुमार रूप की।

0: रात 9:30 पर शब्द शिल्प, ये समन्वित शब्द शिल्प है। इसका प्रसारण आकाशवाणी के पटना, दरभंगा और भागलपुर केंद्र से एक साथ किया जाता है। और रात 10:30 पर, माफ कीजिएगा, 10 बजे से 10:30 तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम थीम पर आधारित आज की रात। आज ये कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद लेंगे रात 10:30 से। श्रोता, ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रांतिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्यजनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत

0: पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हाल चाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और योग को अपने जीवन शैली में कैसे शामिल करें। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, बात आज के दिन की करें तो 26 जून जून के इतिहास में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं। 1945 में 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिससे वैश्विक शांति और सहयोग के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। 1975 में भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की। 1997 में प्रसिद्ध उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की लेखिका जे के रोलिन की ये पहली किताब यूके में प्रकाशित हुई थी। 2015 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ओबरफेल बनाम होजेस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाकर सभी 50 राज्यों में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी। वही 1982 में एयर इंडिया का पहला बोइंग विमान गौरीशंकर बम्बई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। साल 2000 में बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई थी। साल 2004 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जफरुल्लाह खान जमाली ने इस्तीफा दिया। साल 2004 में ही मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन हुआ। तो ये थे आज के दिन का इतिहास। अब बात योग को अपने जीवन शैली में कैसे शामिल करें। योग को अपने जीवन शैली में शामिल करने के लिए भारी बदलाव की जरूरत नहीं है। इसके लिए शुरुआत 10 से 15 मिनट के दैनिक अभ्यास से कर सकते हैं। जी हाँ श्रोताओ, रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट के बुनियादी आसनों और सांस लेने के व्यायामों जैसे अनुलोम विलोम से शुरुआत कर सकते हैं। इसे निरंतर बनाए रखने के लिए

बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सुबह के समय इसकी शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत कुछ चक्र सूर्य नमस्कार से करें। यह शरीर को ऊर्जावान बनाता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। काम के बीच में योगा ब्रेक लें। यदि आप डेस्क पर जॉब करते हैं तो हर घंटे उठकर 2 मिनट के लिए स्ट्रेच करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों के लिए इसके लिए आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। जैसे जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेना और उसे छोड़ना, इस पर ध्यान केंद्रित करें। तनाव के क्षणों में भी कुछ गहरी और लंबी सांसें ले सकते हैं। ये मन को शांत करने का सबसे कारगर तरीका होता है। वे ध्यान दिन या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए मौन बैठकर ध्यान करें। ये नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है। श्रोता, योग केवल मैट पर किए जाने वाले व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि

वे ध्यान दिन या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए मौन बैठकर ध्यान करें। ये नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है। श्रोता, योग केवल मैट पर किए जाने वाले व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र जीवन जीने का तरीका है। इससे शरीर में लचीलापन भी आता है और मन को भी शांति मिलती है।

0: चोरी चोरी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। बोल थे शैलेंद्र के और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। श्रोता, अब आइए सुनते हैं बस में कव्वाली। गायक कलाकार हैं जफर हुसैन कव्वाल और साथी। सबसे पहले सुनिए। अगर न होता तेरा आसरा, कलाम है राज इलाहाबादी का।
1: अगर न होता तेरा

0: आ जाओ,
1: हमारे सामने एक रोग यूं भी आ जाओ,
0: कोई हिजाब ना हो, धर्म या गरीब।

शान खुदा को देखा हमने तेरी।

सब हाथ में है तेरे, हाथ है।

0: राजा राजा राजा जी।
1: जफर हुसैन।

कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे बज़्म ए कव्वाली। अब कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पद्मा तलवरकर का गायन राग जौनपुरी।

0: पद्मा तलवरकर का गायन अभी आप सुन रहे थे, राग जौनपुरी। इनके साथ तबला पर संगत कर रहे थे ओमकार गोलवदे और हारमोनियम पर गोविंद पटवर्धन। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष

0: ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हुर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता

0: से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum.

0: Latvia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockout round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136-8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैन अलाक्वामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा, अक्वामे मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की इक्तसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक्तसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकतदार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔

0: वज़ीर-ए-आज़म ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के दो जहाज़ों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का अहतमाम किया है। इसमें मरकजी वजारतों, रियासती सरकारों और मनशियात की रोकथाम से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे ताकि मुल्क में मनशियात के स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया बहरान से पहले थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक बयान में कहा है कि बहरान शुरू होने पर बल्क एलपीजी की जो सप्लाई मुअत्तल कर दी गई थी उसमें बहरान से पहले की खपत की सतह की 50% की रियायत की गई है, जिससे कमर्शियल और सनती सारिफीन को काफी राहत मिली है। एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल ही में बेहतर होने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3-C4 स्ट्रीम की मुंतकली को कम करने का भी फैसला किया है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान सरकार ने लाजमी खदमात के एक्ट के तहत अहकाम जारी किए थे, जिसकी रूह से C3-C4 स्ट्रीम को सिर्फ एलपीजी की पैदावार के लिए बरोकार लाने की बात कही गई थी ताकि अंदरून मुल्क एलपीजी की पैदावार में इजाफा हो सके। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कमर्शियल और सनती एलपीजी सारिफिन के बारे में जामे डेटा बरकरार रखें ताकि मौसर मनसूबाबंदी और सप्लाई बंदोबस्त में सहूलत हो सके। सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी को वसत देने के अपने अहद को भी दोहराया है। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए अबूरी आंसर कीज को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को सहूलत फराहम की है। तलबा इस महीने की 28 तारीख तक 200 रुपए फी सवाल की फीस अदा करके इन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कबूल किए जाने की सूरत में ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में सख्त कार्रवाई की है और 8 नामजद मुलजिमों और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। मस्कूरा FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ तीनों का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जाम सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने की याद में साल भर चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कल नई दिल्ली में हुई। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जाबिराना और मुतलकुल अनार निजाम हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहता और आखिरकार इसका खात्मा हो जाता है।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक

0: महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: 1975 की इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने के सिलसिले में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था ताकि अवाम में जमहूरियत, आईनी अकदार और शहरियों के हकूक के ताल्लुक से बेदारी को तकवीत मिल सके। बैन अलाक्वामी माली फंड IMF ने कहा है कि मगरबी एशिया में हाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तिसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। IMF की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए IMF के मुवासलात महकमे की डायरेक्टर जूरी कोजेक ने कहा कि गैर मुल्की उथल पुथल के बावजूद भारत की मईशत मुस्तहकम रही है और मजबूत अंदरूनी मुल्क मांग से इसको तकवीत मिली है। IMF ने कहा कि माली साल 2026-27 में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इस तरह अप्रैल में नजर सानी के बाद शरह तरक्की में इजाफे का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बरकरार रहेगा। मोहतरमा कोजेक ने यह भी कहा कि साल की पहली सहमाही के दौरान भारतीय मईशत की कारकर्दगी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छी रही है। वेनेजुएला में दो शदीद जलजले आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों को मलबे में तलाश कर रहे हैं। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां कल 7.2 शिद्दत का जलजला आया था। इसके चंद सेकेंड बाद इससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का जलजला आया। ये दोनों ही जलजले जमीन की सतह के बहुत करीब थे, इसलिए तबाही भी ज्यादा हुई है। कई मुल्कों ने इमदादी कोशिशों में मदद का वादा किया है। वेनेजुएला की सदर ने जलजले के तनाजुर में भारत की यगानगत को तस्लीम करते हुए कहा है कि वो मुश्किल की घड़ी में इश्तराक के जज्बे के साथ खड़ा है। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में कल रात इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 136 रन बनाए। भारत के लिए राधा यादव ने 3 जबकि श्रीचरणी ने 2 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में भारत ने जीत का निशाना 16 ओवर्स और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 53 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे न्यूजर्सी स्टेडियम में ग्रुप ई के एक मुकाबले में एक्वाडोर जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। इससे कबल फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया। वो पहली मर्तबा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। टीम के लिए निकोलस पेपे ने 2 गोल किए। निशानेबाजी में जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कल 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मजीद 4 तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 25 हो गई। मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में राजचंद्रा ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश चौथी पोजीशन पर रहे। योगेश, प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने 4 तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई जिनमें सोने के साथ चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मर्तबा तमगों के मामलों में सरे फहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अलाक्वामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज आइंदा माह की 1 तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया।

AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे अशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। यह प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देशभर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है।

0: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की यह परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए के अनुसार उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। एनटीए ने पुनर्परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी हेतु अपने बैंक खाते के विवरण की पुष्टि और उसे अद्यतन करने के लिए भी एक पोर्टल खोला है। बैंक विवरण इसी महीने की 30 तारीख तक अद्यतन किए जा सकते हैं। नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय जिले के परीक्षा केंद्रों पर हुए फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टीम का नेतृत्व ईओयू के डीआईजी करेंगे। गौरतलब है कि नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में अलग अलग मामलों में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मद्य निषेध सिपाही बहाली परीक्षा में बेगूसराय और नवादा में फर्जीवाड़े मामले की जांच भी ईओयू करेगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टर सिंह के अनुसार विभाग ने कार्रवाई से पहले उनसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उन्होंने कहा है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सके थे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सिंह को बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर पीएमसीएच के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदन की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के भीतर या बाहर स्थल अध्ययन पर जाने वाली सभी समितियों के साथ प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा के दौरान प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करनी होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, जमुई, औरंगाबाद और अरवल जिले के कई प्रखंडों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही इन स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने बांका, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया और मुजफ्फरपुर समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना, गयाजी, जीरादेई, बक्सर, शेखपुरा और वाल्मीकि नगर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर

रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दवाओं पर QR कोड या बार कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं, टीके, मादक और मनोरोगी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। यह प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना, अहमदाबाद और दानापुर बलसाड़ समेत 5 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल अब 30 जुलाई तक, बलसाड़ दानापुर स्पेशल 27 जुलाई तक और अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई तक चलेगी। इधर रेलवे ने पटना कोटा एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन शाम 5:41 पर जौनपुर सिटी स्टेशन पर पहुंचेगी। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों के शहादत की याद में यौमे अशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर हम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के करबला में दिए गए बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि उनकी शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। अरवल समेत विभिन्न जिलों में वरीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में ताजिया जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से मुंगेर जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक युवक अब भी लापता बताया जा रहा है। मृतकों के शवों को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुंगेर भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। मामले में गोदाम मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत और आयरलैंड के बीच आज से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला बेलफास्ट में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस मैच से अपना डेब्यू कर सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में वैभव टीम इंडिया के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। उनकी उम्र अभी 15 साल 90 दिन है। भारत रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू, बिलौटी पहुंची आयोग की टीम ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, हज 2027 16 साल बाद पटना एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन होगा, पहली बार सीधे जा सकेंगे जेद्दाह और मदीना। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 188 की मौत। प्रभात खबर लिखता है, स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान गायब रहे PMCH के प्राचार्य को हटाया। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, NCERT सिलेबस में इमरजेंसी सेक्शन जोड़ा गया, 9वीं कक्षा को पढ़ाया जाएगा। आज अखबार की प्रमुख खबर है, शिक्षकों के तबादले के

0: लिए नई नियमावली लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे आशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
2: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
2: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
2: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ पलों में।

दुआ सलाम व अदाब और आपके इस्तकबाल के साथ एक बार फिर हाजिर है आपकी मेज़बान आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। आगाज़ अंजुमन से पहले आइए जान लेते हैं हमारी आज की नशरियात। हिज़्ब मामूल शुरुआत करेंगे हम शेर नगमा के साथ और आज हम आपको सुनवाएंगे जुमा के अफजल और मुक़दस दिन के मौके नाते पाक। फिर आप सुनेंगे मकाला बातें जिनसे जिंदगी सवरती हैं के तहत तालीम का मकसद। मकाला निगार होंगे मोहम्मद तौसीफ आलम। और आज यौम आशूरा है तो इस मौके पर हम आपको सुनवाएंगे वासिफ हुसैन शब्बर से नौहा। और प्रोग्राम के आखिर में मौसिकी के तहत आप सुनेंगे कुछ नातिया कलाम। तो आइए शुरुआत करते हैं उस्ताद अफजल हुसैन जयपुरी के इस मुकद्दस कलाम के साथ।

0: ही मुकद्दर था तो गुंचों की मुट्ठी में दिले बुलबुल हुआ होता, गुनाहों में जरर होता, दुआओं में असर होता, गुनाहों में जरर होता, दुआओं में असर होता, मोहब्बत की नसर होता, हसीनों की अदा होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमील मजहरी साहब के बारे में। सामईन, जमील मजहरी अदबी दुनिया में एक ऐसा नाम जिन्होंने उर्दू शायरी को एक अलग पहचान दी है। मजहरी साहब एक मशहूर उर्दू शायर रहे हैं जो अपनी गज़लों और नज़मों में जदीद मौजूआत के साथ साथ क्लासिकी रिवायत को खूबसूरती से मिलाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िंदगी, मोहब्बत और इंसानी खुद शनासी के बारे में अपने पुरजोश शोरों के लिए जाने जाते हैं। जमील मजहरी का असल नाम सैयद काजिम अली था। इनकी पैदाइश 1905 ईस्वी को पटना के मुगलपुरा में हुई थी। इनका वाबस्ता पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से भी रहा है। जमील मजहरी बुनियादी तौर पर नज़मों के शायर थे, मगर इसके अलावा वे गज़ल और मरसियाँ भी लिखते थे। जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि तेज़ है हवा ज़माने की। गर्ज़ की जमील मजहरी की शायरी फ़लसफाना सवालात, वजूदी मुश्किलात और इंसानी तजुर्बात की पेचीदगियाँ वाज़े होती हैं। वो अपनी नज़मों में मुख्तलिफ जज्बात और ख़यालात को पेश करते हैं जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मजहरी की शायरी और तशबीहात का इस्तेमाल इस उलझन को मज़ीद गहरा करता है जिससे क़ारी को एक नई बसीरत मिलती है। उनके ख़यालात की कसरत और गहराई उनकी तख्लीकात को ख़ास बना देती है, जहाँ कभी ज़िंदगी की सादगी और कभी उसकी पेचीदगियों को बयान किया गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मकाला, बातें जिनसे ज़िंदगी सवरती हैं। मकाला निगार हैं मोहम्मद तौसीफ आलम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़ूबसूरत बनाएं और दुनिया व आख़रत को संवारें। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम इंसानों को न सिर्फ़ इंसानियत सिखाई बल्कि हमें सही तरीक़े से ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाया है, ताकि हम न सिर्फ दुनिया बल्कि आख़रत भी संवार सकें। दुनिया के सब रिश्तों का आगाज़ सबसे ख़ास रिश्ते से हुआ, वो था शौहर बीवी का पाक रिश्ता, जिसके बग़ैर दुनिया के किसी और रिश्ते का वजूद नामुमकिन है, ख़ाह वो माँ बाप, भाई बहन या दिगर और रिश्ते ही क्यों न हों। जब वजूद आदम अलैहिस्सलाम किया गया तो उनकी तन्हाइयाँ को दूर करने के लिए अल्लाह ने न माँ बनाई, न बाप और ना ही कोई दोस्त, बल्कि एक ऐसी शख्सियत को पैदा किया गया जो एक औरत थी और उनका रिश्ता अल्लाह ने शौहर बीवी का बनाया। यानी कि अल्लाह ने एक रिश्ता में ही हमारे तमाम रिश्ते दे दिए। शौहर बीवी को एक दूसरे का लिबास यूं ही नहीं कहा गया है। लिबास का मतलब है कि जब आप उसे पहन लें तो आपके जिस्म का कोई भी आयब किसी दूसरे इंसान के सामने जाहिर न होने पाए। ठीक इसी तरह जब शौहर बीवी एक दूसरे को अपना लिबास समझते हैं तो एक बीवी अपने शौहर का कोई भी बुरा अमल या खामियों को दूसरे इंसान के सामने जाहिर नहीं होने देती, और शौहर भी अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत ठीक इसी तरह करता है। हर इंसान में कमियां और खूबियां दोनों मौजूद होते हैं। ये ज़िम्मेदारी हम पर है कि हम सामने वाले में क्या देखते। अगर शौहर बीवी एक दूसरे की कमियों की जगह खूबियां देखने लगे तो माशरे से बहुत सी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। हमारा दीन ये बताता है कि शौहर बीवी के रिश्ते को कैसे खूबसूरती से निभाया जाए, یہ سنت نبوی

खुदा से करता हूँ मैं ये दुआ मदीने में। आप सुन रहे थे उस्ताद अफसल हुसैन जयपुरी का ये कलाम अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमील मजहरी की शायरी के बारे में। अगर इस गुलशन हस्ती में होना ही मुकद्दर था, अगर इस गुलशन हस्ती में होना

0: सवाब का बास बनेगा। जब शौहर अपनी बीवी को पानी भी पिलाए तो सवाब है। तो सोचने वाली बात है कि जब एक शौहर अपनी बीवी का सारा खर्च उठाता है तो कितना अजर व सवाब हासिल होगा। इसी तरह जब बीवी अपने शौहर की खुशनुदी के लिए उसका और उसकी घर वालों का, बच्चों का ख्याल रखती है तो उसे कितना अजर व सवाब मिलता है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो बीवी अपने शौहर की ताबेदार होती है उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बीवी के लिए परिंदे हवा में इस्तग़फार करते हैं, मछलियाँ दरियाओं में और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फार करते हैं। गर्ज़ ये कि शौहर बीवी का रिश्ता हर तरह से बास खुशी और कामयाबी वाला बने, उसके लिए दोनों को ही एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक, नरमी व मोहब्बत का मुजाहरा करना होगा ताकि अज़दवाजी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी में राहत हासिल हो। शौहर बीवी को एक दूसरे का हर हाल व काल समझना ज़रूरी है। कहते हैं शौहर बीवी एक दूसरे के उन आंसुओं को भी देख लेते हैं जो हम ज़माने से छुपाते हैं। वो जो समझें तो अश्क सब कुछ हैं, वो न समझें तो सिर्फ पानी है। अज़दवाजी ज़िंदगी को संवारने के लिए शौहर बीवी का एक दूसरे को समझना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारी दुनिया ही नहीं आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: अभी आप सुन रहे थे मकाला, बातें जिनसे जिंदगी सवरती हैं। मकाला निगार थे मोहम्मद तौसीफ आलम। आइए सुनते हैं वासिफ हुसैन शब्बर से नौहा।

आप सुन रहे थे वासिफ हुसैन शब्बर से नौहा। दोस्तों, आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, जिसे हम यौमे आशुरा भी कहते हैं। मुहर्रमुल हराम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, जिनमें यौमे आशुरा मुहर्रम की 10वीं तारीख को कहते हैं। आज के दिन अकीदतमंद रोज़ा रखते हैं और इबादत करते हैं, क्योंकि यौमे आशुरा की बहुत फजीलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमे आशुरा की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन ज़मीन भर सोना भी खर्च करे तो भी आशूरी की फजीलत को नहीं पा सकेगा। इसमें जन्नत के 8वें दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ताकि वो जिस दरवाजे से चाहें जन्नत में दाखिल हो जाएं। यौमे आशुरा की ख़ास फजीलतें इस तरह हैं: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दरजाते आलिया नसीब हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर उतरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलील का मनसब अता हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई नसीब हुई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटाई गई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम की तौबा कबूल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को फिरौन से निजात मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहादत नसीब हुई। गर्ज़ की मुहर्रमुल हराम की कई फजीलतें हैं, और इस दिन शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ याद किया जाता है। आइए सुनते हैं मौसिकी के तहत चंद नातिया कलाम। सबसे पहले सुनते हैं रफ़ीक हुसैन जयपुरी का ये कलाम, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में।

दयारों में है एक दयारे मदीना। आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में मुकद्दस नातिया कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम, चिराग जयपुरी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर। श्रोता, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम डस मंजरी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का अगला गाना धुन की फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

जब तक है जान, इस फिल्म का गाना सुनिए नीति मोहन और साथियों की आवाज़ों में। बोल हैं गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम डसमंजरी। कार्यक्रम का अगला गाना बर्फे फिल्म से।

मैं हूं ना, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं पैडमैन फिल्म का ये गाना।

बैडमैन फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बोल थे कौसर मुनीर के और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं परमानंद मिश्रा की आवाज़ में कुछ गीत। सबसे पहले सुनिए रामानाथ अवस्थी की रचना, जीवन कभी सुना न हो, कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो।

अब आइए सुनते हैं अमरेंद्र, डॉक्टर अमरेंद्र की रचना। लोग मुझसे पूछते हैं जूही कचनार क्या है, मैं उन्हें अब क्या बताऊं, दो दिलों का प्यार क्या है।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे परमानंद मिश्रा की आवाज़ में कुछ गीत। इनके साथ संगत कलाकार थे तबला पर डॉक्टर श्याम मोहन, हारमोनियम अभिषेक पाठक और स्पेनिश गिटार पर थे प्रीतम कुमार मिश्रा। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गाना चंडीगढ़ करे आशिके फिल्म से सचिन जिगर और प्रिया सरिया की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कॉकटेल फिल्म का गाना, आरिफ लोहार और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में। बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

बेगम जान फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। बोल थे कौसर मनेर के और धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। अब लीजिए सुनिए सदियों फिल्म का गाना रेखा भारद्वाज की आवाज़ में।

zaga zaga zaga zaga.

रॉकस्टार फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं लाहौर फिल्म का गाना राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में।

0: इस गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे अगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:45 हुए हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज सुनिए कुछ भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनवा रहे हैं सर्वजीत यादव अनुज के गाए कुछ लोकगीत।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लिया। कलाकार सर्वजीत यादव अनुज, एक अंतराल के बाद सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।

0: सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं यह सारी की सारी छुपी रह जाती है अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

अरे सैया जी के डेरा से कैसे जइबो ना, से कैसे जइबो।

0: अभी आपने नीलेश्वर मिश्रा के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम इसी के साथ अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहार पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह। ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: हेलो डॉक्टर,
3: हेलो डॉक्टर,
0: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर।

0: श्रोताओं नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय पर विशेषज्ञों को बुलाकर आपसे बातचीत करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पटना के जाने माने हृदय रोग संस्थान इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, जिसे IGIC के नाम से जाना जाता है, वहाँ के डॉक्टर आनंद कुमार को, जो कार्डियोलॉजी विभाग के बड़े चिकित्सक हैं। और आज हमारा विषय है हृदय रोग में बरती जाने वाली सावधानियां और समाधान। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद रुपेश जी। मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार है। मैं अभी इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना PMCH में कार्यरत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बुलाए। और जो भी श्रोतागण का समस्या है आज मैं उसका जवाब दूंगा आप लोग के बीच में।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली हृदय रोग है क्या, प्रकार कितने हैं, क्या कारण है हो जाने का?
1: हृदय रोग तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन जो दो मुख्य प्रकार के में जो आता है, एक तो है हार्ट अटैक जो है, और दूसरा है कि वाल्व का प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग वाल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं, और दूसरा हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो मेन प्रकार हैं जो हम लोग के बीच में, जो हम लोग रेगुलर इसको देखते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, अगला जो सवाल है वो ये है कि अभी वर्तमान समय में हृदय रोग के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
1: हृदय रोग बढ़ने का मुख्य कारण आज के समय बढ़ने का है कि क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गया।
2: हेलो डॉक्टर।
0: डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में हैं, आप बताएं आपका क्या सवाल है।
3: जी सर, जैसे सोने के समय में सर नींद आता है ना सर, नींद आने के समय में सर सीना के सामने से सर झिझिना के 2 सेकंड के लिए सर सिर में निकल जाता है।
1: जैसे नींद आने के समय में अगर सोने समय झुनझुनी टाइप का होता है सीना के टाइम में, तो ये देखना पड़ेगा कि आप खाना कब खा रहे हैं और खाना खाने के कितने देर के बाद आप जा रहे हैं सोने के लिए। अगर आप मान लीजिए कोई मसालेदार खाना खा रहे हैं या फिर जो फैटी डाइट जो हैवी मील ले रहे हैं और तुरंत जा रहे हैं बेड पे सोने के लिए, तो ये प्रॉब्लम गैस के कारण से हो सकता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा तक आप उसको वॉक कीजिए। खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा तक आप उसको बेड पे नहीं जाइए, तो वॉक कीजिए। जब आपके अंदर से पूरा जो भी खाना खाएं उसका गैस पास हो जाता है तब जाके आप बेड पे जाए, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आपका उम्र कितना है?
3: हमारा उम्र है 32।
1: पहले से कोई बीमारी भी है चीनी का, प्रेशर का है?
3: नहीं सर, पहले से ही था कि पेशाब के रास्ते सर खून रुक रुक जाता था सर।
1: अच्छा,
3: इलाज कराया।
1: तो सीना में दर्द नहीं ना होता है? जैसे सीना में दर्द होना, भारी बन सा होना, ये सब दिक्कत नहीं ना?
3: दर्द कुछ भी नहीं होता है, जिन दर्द बाज के या सर में निकल जाता है।
1: अच्छा हाँ, तो मेन कारण वही है आपका, जो भी टाइम टेबल है खाने पीने का और किस तरह का आप खाना खा रहे हैं, इसको थोड़ा सुधार कीजिए तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा।
0: आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं, किस जगह से बात कर रहे हैं?
3: हम मोतिहारी जिला के छतौनी से बोल रहे हैं, आकाश कुमार।
0: अच्छा जी आकाश जी, उम्मीद है डॉक्टर साहब की बातों से आपका समस्या का समाधान हो गया होगा। हेलो डॉक्टर में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हृदय रोग आजकल बहुत आम हो गई है, तो मुख्य रूप से

0: क्या कारण आप देखते हैं हृदय रोग के मामले बढ़ने का?
1: मेन तो रीज़न हमको लग रहा है जैसे कि आज के डेट में जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और जो खान पान जो चेंज हो गया है, मतलब यंग और जो यंग लोग हैं और जो एडल्ट लोग हैं जो ओल्ड लोग हैं, तीनों का खान पान और लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। इसके कारण से ही जो हार्ट की समस्याएं हैं या हार्ट अटैक की समस्याएं हैं उसमें नंबर ऑफ केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्य कारण तो यही है, रूटीन बहुत ज़रूरी होता है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जो खान पान है उस सीमित करना, खान पान ज़्यादा शुगर, फैटी डाइट या तेल मसाला नहीं खाना, रेगुलर व्यायाम करना, ये सब में आजकल कमी आ रही है जिसके कारण से वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण से जो है दिल की बीमारियाँ जो है वो बढ़ते जा रही हैं।
0: आपने बताया कि बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल भी बदल गया है, खान पान की चीज़ें भी पहले से बहुत बदल गई हैं। और सर एक और सवाल आता है इन बीच में कि हृदय रोग के जो शुरुआती लक्षण हम पहचाने कैसे, कि कोई मरीज आम समस्या जो होती है कई बार सीने में दर्द वगैरह की समस्या बाकी चीज़ों में भी होती है, तो कैसे हम उसको पहचाने?
1: देखिए जो
0: सर
1: जो
0: एक कॉल आ रहा है, हम लोग पहले कॉल लेते हैं। हेलो डॉक्टर
1: जी हेलो डॉक्टर, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है।
0: जी, आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं बताएं, जो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात।
1: मेरा नाम सर सुहासिनी है और मैं कदम कुआ से बोल रही हूँ।
0: जी बताइए क्या समस्या है आपको।
1: सर मुझे ये जानना था कि आजकल जिसे भी देखिए हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हर किसी को हार्ट की बीमारी हुई रहती है, तो हेल्दी हार्ट के लिए और हार्ट का कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए?
0: हेल्दी हार्ट के लिए तो आपको सबसे पहले तो समय पे सोना, समय पे उठना, ठीक है,
1: जी
0: खान पान में परहेज करना, ठीक है, जैसे कि कम नमक खाना, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना, जो
1: जी
0: फैटी डाइट है उसको सीमित करना, ठीक है, और नियमित व्यायाम करना, लगभग 30 मिनट व्यायाम करना। तो ये सब आप प्रिकॉशन करती है, मान लीजिए कोई आपको सिम्टम्स हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके उसको जांच उच करवाना, अगर जल्दी पकड़ में आ जाएगा तो बीमारी को हम लोग बढ़ने से रोक भी सकते हैं। तो ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज हो रहा है या फिर अर्ली स्टेज में है
1: हाँ
0: तो उसको पहले से पकड़ के उसको सीमित किया जा सकता है।
1: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
0: ठीक, सुहासिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो डॉक्टर में फ़ोन करने के लिए।
2: हेलो डॉक्टर।
0: डॉक्टर साहब एक और कॉल हम लेते हैं और फिर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हाँ हेलो डॉक्टर।
3: हाँ जी, हम वृज कुमार सिंह जिला भोजपुर ग्राम पसौर थाना चरपोखरी से बोल रहे हैं।
0: जी डॉक्टर साहब हैं स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछें, क्या दिक्कत है आपको?
3: अच्छा तो अब हम चलते हैं शहर तो हमको हाफ कमर जाता है।
1: ठीक है, तो ये कब से हो रहा है आपको, कितने दिन से हो रहा
3: जी जब से ऐसी जब हुआ है कोरोना उस समय से घर से बाहर मत निकलिए, ऐसे मत कीजिए, खड़ा होकर चलते हैं तब तो, ऐसे बैठा रहे तो हाफ नहीं कबरता है, ठीक है, लेकिन खड़ा होकर चलते हैं तो हाफ कबर जाता है।
1: अच्छा, तो पहले से आपको कोई बीमारी भी है, चीनी का, शुगर का, कोई दवाई वाई भी
3: अच्छा भाई
1: खाते हैं
3: सब तो
1: पहले से?
3: कुछ नहीं है सर।
1: चलने पे हाफ कवर होता है। देखिए दो कारण से हो सकता है, या तो आपका कोई फेफड़ा में कोई दिक्कत हो या फिर हार्ट का बीमारी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको तो जांच उच करवाना होगा। आपका कोई जांच उच हुआ है, ECG, इको, एक्सरे ये
3: ना
1: सब?
3: इस सप्ताह ही कराया है।
1: अच्छा तो ठीक है, आप देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है ना तो हम लोग का क्षमता भी चलने का कम हो जाता है। अगर उस क्षमता से आप अधिक चलिएगा तो आपको दम फूलेगा। आप जितना चल सकते हैं आप उतना ही चलिए, उससे अधिक नहीं चलिए, अपना डेली रूटीन काम कीजिए, ठीक है। और एक बार जो है या तो लोकल या फिर आप इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान शुक्रवार को आ जाइए, वहाँ पे हम आपका सारा हार्ट का जो जांच उच है वो सब करवा देंगे, ठीक है। और अभी प्रिकॉशन के लिए तो यही है कि ज़्यादा चलिए नहीं, ठीक है, पानी जो है 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीजिए, नमक कम खाइए, नमक ऊपर से नहीं लेना है, ज़्यादा घी डालडा तेल मसाला का सेवन सीमित कीजिए, ठीक है। और बीपी शुगर का तो क्या, बीपी शुगर आपका कंट्रोल रहता है?
3: हाँ ये सब सब ठीक है सर।
1: तो ठीक है, तो एक बार आपका मतलब कार्डियक इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि हार्ट का क्या स्थिति है, तो उस सब के लिए तो आपको एक बार पटना आ जाइए, नहीं तो फिर अगर पटना आने
3: पहले
1: में,
3: सर हम गांजा पीते थे,
1: हाँ तो गांजा पीते थे
3: गांजा और
1: ना,
3: शराब।
1: तो शराब पीते थे ना, तो कार्डियक का कम चांस लग रहा है, फेफड़ा का ज़्यादा दिक्कत लग रहा है, ठीक है, तो गांजा
3: हाँ
1: पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है तो फिर दम फूलने लगता है, तो उसके लिए तो फिर गांजा बंद कर दिए ना।
3: हाँ गांजा बंद कर दिए हैं सर, गांजा
1: हाँ
3: बंद आप
1: तो
3: अपने
1: एक
3: पीते हैं।
1: इनहेलर आता है दवाई, इनहेलर पंप जो जिसको बोलते हैं सांस लेना, वो ले रहे हैं क्या?
3: जीना दवाई तो कुछ नहीं लेते हैं।
1: हाँ तो आ जाइए एक बार, आ जाइए।

0: ये तो फिर तो सब जांच उच करवा के फिर दवाई वाई लिख देंगे, तो फिर आपका जो दिक्कत है कंट्रोल हो जाएगा।
1: जी धन्यवाद धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे जो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो हम कैसे पहचाने।
0: देखिए, शुरुआती लक्षण जो है सीना में दर्द होना, जिसको हम लोग चेस्ट पेन कहते हैं, या फिर भारीपन होना, जिसको हम लोग चेस्ट हैवीनेस कहते हैं, उसके अलावा सांस फूलना, फिर उसके बाद पसीना आना। ठीक, अगर हल्का सा भी कोई इस तरह का सिम्टम्स है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, और तुरंत अपने डॉक्टर से मिल करके इसका ECG करवा के, इको करवा करके इसको पकड़ना है। तो शुरुआती लक्षण तो यही है, सीना में दर्द होना, सीना में भारी आना।
1: डॉक्टर साहब, हम लोग बातचीत करते रहेंगे लेकिन अब कुछ मनोरंजन के लिए भी हम लोग थोड़ी करें। डॉक्टर साहब, आप बहुत युवा हैं तो अभी इस टॉपिक पे चर्चा चलती रहेगी। आपका कोई ऐसा पसंदीदा गाना हो जिसको आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हो?
0: एक तो वो है शायद ये किशोर कुमार का, मुसाफिर हूँ
1: यारो,
0: यारो,
1: जी
0: तो ये तो एक ये गाना है, तो
1: ठीक है
0: ये
1: सर,
0: गाना हम
1: तो हम
0: सुनते
1: लोग ये
0: हैं।
1: गाना आपके इस चॉइस के गाने को हम सुनवाते हैं और आगे चर्चा को जारी रखते हैं।

0: हेलो डॉक्टर।
1: एक और कॉल हम लोग लेते हैं सर, और फिर बातचीत का जारी रखेंगे। लगता है संपर्क हमारा टूट गया। जी, आप सर बता रहे थे।
0: हाँ, जैसे चलने पे भी सीना में दर्द होना, ज़्यादा चल नहीं पाना, तो ये सब भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको जो भी सिम्टम्स है उसको पकड़ के और अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, आपने मतलब बता दिए कि लक्षण किस तरह से हम क्या पहुंचाने। और कभी कभी क्या होता है सर कि कुछ खास तरह के लोगों को मतलब हृदय रोग का खतरा ज़्यादा होता है, तो ये किस तरह के लोग हैं जिन पर कि हम हृदय रोग का खतरा समझें कि ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं उस
0: हाँ,
1: बीमारी के प्रति।
0: नहीं, जैसे कि जिन पेशेंट को हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, तो वो उनको रिस्क है। उसके अलावा जिस पेशेंट को
1: हेलो डॉक्टर। हाँ सर,
0: कोलेस्ट्रॉल।
1: एक कॉल हम लेते हैं। हेलो डॉक्टर
2: नमस्ते सर जी।
1: जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। डॉक्टर साहब स्टूडियो में हैं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बताएं।
2: अरे डॉक्टर सितारे गोरल वैशाली से।

0: जी सितारे जी, हाँ डॉक्टर साहब से बात करें, आप बताएं आपको क्या दिक्कत है।
1: हृदय में लोग मुझे पेस मेकर लगता है
0: जी,
1: बराबर चेकिंग कराया जाता है।
2: वो पहले से हृदय रोग का शिकायत है क्या, पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है?
1: जी हुआ था एक बार।
2: हाँ तो हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका दवाई चल रहा है
1: जी।
2: हाँ तो हर एक 6 महीना पे तो आपको डॉक्टर से तो मिलना पड़ेगा ना, हर एक 6 महीना पे आपको अपने डॉक्टर से मिल करके अभी उसका क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, दवाई सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है, कि और दवाई घटाना होगा बढ़ाना होगा।
1: दवाई तो सूट कर रहा है।
2: हाँ तो ठीक है, उसको खाइए और रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और पल्स जो होता है जांच करते रहिए और अपने डॉक्टर से मिलते रहिए।
1: इतना सुंदर सलाह के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी जी सितारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह के मरीज को ज्यादा खतरा होता है।
2: जैसे जिनको पहले से शुगर का शिकायत है, ब्लड प्रेशर का शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल का शिकायत है, उनको रिस्क ज्यादा होता है। जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनको मोटापा बहुत ज्यादा है, उनको हो सकता है। किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि उसके घर में किसी को हार्ट अटैक से मौत हुई है या हार्ट अटैक है, उनको हो सकता है। जिनका सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिनका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खान पान में परहेज नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट अटैक का।
0: जी सर, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, मोटापे वगैरह और हृदय रोग में, लोगों ने कहा है कि मतलब हाइपरटेंशन और हृदय रोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब किस तरह से ये कहावत कितने हद तक सही है?
2: हाँ नहीं, हर एक केस में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जो ब्लड प्रेशर और जो दिल का बीमारी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हर एक केस में नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण से, मान लीजिए आपको बीपी है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करता है, जो हम लोग का खून का नली है, जो खून का नली की जो परत है उसको वो डैमेज करता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसके कारण से वहाँ पे क्लॉट हो गया या फिर वहाँ पे एक जिसको सरल लैंग्वेज में काई कह सकते हैं, कि नाली का पाइप में जैसे काई जमा होता है, तो वैसे ही खून के नली में हाई ब्लड प्रेशर के कारण से जो खून की जो नली होती है उसकी वहाँ पर डैमेज होने के कारण से एक तरह का काई वहाँ जमा हो जाता है, जिसके कारण से जो खून का जो फ्लो है उसमें कमी हो जाती है। जितना खून जो हार्ट को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, तो जिसके कारण से हार्ट का प्रॉब्लम जो है
0: सर, जाता आपने जो काई कहा वो वही कोलेस्ट्रॉल और
2: काई एक ही है। खून का नली होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का परत हो जाता है, जिसके जिसे जिसके कारण से उसका जो चौड़ाई है खून की नली की वो कम हो जाती है और दिल का बीमारी जो है होता है।
0: सर इतनी सारी बातें हुई तो इसमें एक और सवाल हमारे श्रोताओं के मन में आ रहा होगा, मेरे भी मन में कई बार आता है कि अभी युवा जो मतलब जिनको हम यंग कहते हैं, यूथ कहते हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं हृदय रोग की चपेट में,
2: आज
0: इसका सर क्या कारण
2: है? इसका यही कारण है कि आजकल के जो युवा है, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही ठीक नहीं है, रूटीन नहीं है लाइफ में, समय पे सोना समय पे उठना नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, सेवन जैसे कि स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और बड़े बड़े शहरों में तो ड्रग्स भी लेते हैं, तो इस तरह का सेवन करने से जो हार्ट की जो बीमारियां हैं जो पहले हो जा रही है।
0: क्योंकि सर अभी कुछ हाल फिलहाल में घटनाएं ऐसी हुई, कई सेलिब्रिटी थे जो बहुत यंग थे, कुछ लोग जिम कर रहे थे उनके साथ ऐसी घटना हो गई, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और अचानक से पता चला वो गिर गए।
2: क्या होता है ना कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करने में क्या होता है, या जिम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हार्ट का प्रॉब्लम आपको पहले से होता है जो आपको नहीं पता रहता है। खून की जो नली होती है वो छोटी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपका जो है बॉडी है उसको कॉम्पनसेट करके कोई सिम्टम्स नहीं होता काम का, लेकिन जैसे ही आप कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि शरीर का पानी जो है बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन कारण से जो वहाँ पे जो खून की नली में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है या जो जिसको हम लोग काई कहते हैं वो क्या होता है, वो टूट जाता है, टूट जाने के बाद से वो जाके दिल का दौरा कर देता है।
3: हेलो डॉक्टर।
0: सर हम लोग ये बात जारी रखेंगे, एक श्रोता का कॉल लेते हैं हम। हेलो डॉक्टर।
4: हेलो सर
0: जी,
4: आशीष कुमार झा बोल रहा हूँ पटना बिहार से।
0: हाँ जी बताएं आपको क्या समस्या है डॉक्टर।
4: जी सर मेरी समस्या ये है सर कि मेरी उम्र अभी सर 40 वर्ष है और इधर कुछ दिनों से सर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। एक फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता हूँ तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दूसरे फ्लोर पे चढ़ता हूँ तो काफी ज्यादा सांस तेज हो जाती है और मुझे नॉर्मल होने में 40 सेकेंड या 1 मिनट तक लग जाते हैं सामान्य होने में। तो क्या ये मेरी

0: हाथ की हृदय रोग की समस्या है या कुछ और भी हो सकता है?
1: नहीं, हृदय रोग भी हो सकता है और किसी और कारण से भी हो सकता है। फेफड़ा का भी कारण हो सकता है, उसके कारण से भी जो है आपका जो क्षमता है कम हो गया है। ठीक है,
0: जी हाँ सर,
1: तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पहले से कोई बीमारी तो नहीं है आपको, चीनी प्रेशर का, आपका वजन कितना है। ठीक है, या अगर ये
0: जी
1: सब चीज़ नॉर्मल है तो फिर कार्डियक इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि सीढ़ी चढ़ने पे क्यों हो रहा है, जिसको हम लोग इको करते हैं। इको करके देखते हैं कि उसमें हार्ट का पंपिंग कैसा है, पंपिंग नॉर्मल है कि घट गया है। तो अगर मान लीजिए कि आप एक सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक जाने में ही आपको हपनी हो रहा है, तो एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ये सारा जांच जो है वो आप करवा लें। और प्रिकॉशन के लिए तो हम यही कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर तक ही चढ़ें, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे नहीं जाएं अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। और देखिए कि आपका वजन कितना है, वजन के कारण से भी सांस
0: जी
1: फूलता है।
0: वजन तो सर मेरा ज्यादा है, लगभग 90 किलो है सर, और
1: हाँ, तो
0: मेरी उम्र
1: उसको
0: 40 वर्ष है, मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है।
1: हाँ, तो BMI निकाल करके, BMI निकालिए उसका, और अकॉर्डिंग टू वजन, उसके अकॉर्डिंग वजन कम कीजिए।
0: जी जी सर,
2: बहुत आपका धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। सर, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो बहुत युवा
1: यंग
2: लोग
1: में
2: भी
1: हाँ
2: इसमें चपेट में आ रहे हैं और कई बार जिम वगैरह करते समय बातचीत हो रही
1: जिम
2: थी।
1: में, तो जिम में तो मुख्य कारण ये होता है ना कि हैवी एक्सरसाइज करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, पहले से कुछ हार्ट का प्रॉब्लम या खून के नली में प्रॉब्लम होता।
3: हेलो डॉक्टर,
2: सर हम लोग बातचीत जारी रखेंगे, एक और श्रोता है उनका कॉल पहले ले लें।
4: हेलो।
2: हाँ हेलो
4: हाँ, मेरा नाम सीमा है और मैं कंकड़बाग से बोल रही हूँ।
2: जी। सीमा जी, आप बताएं आपको क्या समस्या है, डॉक्टर साहब हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, बताएं।
4: मेरी फैमिली में मौत है और उनको पिछले 1 साल से हार्ट की बीमारी है और उनको डायबिटीज बहुत पहले से है, तो इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहती हैं और कभी कभी बीपी भी बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी होगी उनको?
1: सावधानी तो ये है, सबसे पहले तो शुगर कितना रहता है उनका, शुगर और ब्लड प्रेशर कितना रहता है, कंट्रोल
4: शुगर
1: रहता
4: लेवल
1: है
4: जो
1: कि
4: है
1: ज़्यादा रहता है?
4: कभी बढ़ जाता है और कभी कभी थोड़ा लो भी हो जाता है, तो शुगर जो है वो कंट्रोल उतना नहीं हो पाता है।
1: हाँ, तो सावधानी में तो पहले यही कि आपको BP और शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ आपका कंट्रोल रहेगा तो जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो उसका प्रोग्रेशन भी, मतलब कि उसको आप कंट्रोल कर सकते, ताकि वो आगे दूसरे रूप में प्रोग्रेस नहीं करें, बात समझी? और
4: हाँ
1: जो उसका मेडिसिन भी ले रही होगी आप, खून पतले करने का दवाई उवाई ले रही होगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना नियमित।
4: वॉक भी कर सकती हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक तो रोज नहीं हो पाता है क्योंकि
1: हाँ, हल्का हल्का वॉक जितना वो चल सकती हैं, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करता है, जितना उनका कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है ना, उतना एक्सरसाइज वो कर सकते।
4: ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक
2: जी
4: यू, थैंक
2: सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: यू सर।
2: तो अब सर कार्यक्रम का वक्त भी खत्म होने वाला है, आखिरी समय में सर ये सवाल हम करते हैं कि हम इस हृदय रोग को जो एक साइलेंट किलर के तौर पे हमारे सामने आ रहा है, तो किस तरह से सर हम करें, आप हमारे श्रोता को जो ये युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, या हमारे जो भी किशोर के उम्र के लोग हैं, क्योंकि आजकल वो भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप सजेशन देना चाहेंगे कि क्या कुछ करें ताकि वो इस बीमारी से बचे रहें, और अगर कुछ ऐसी समस्या आती है तो क्या करना चाहिए उनको तुरंत से, ताकि कुछ आगे बड़े बड़ी घटना ना हो।
1: तो हम तो मेरा तो यही सुझाव है सबके लिए, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो या मिडिल एज पर्सन हो, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस भी एक कारण है हार्ट अटैक का, या दिल की जो बीमारियां बढ़ रही हैं। खान पान पे ध्यान रखना है, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाना है, जो फैटी डाइट है उसको सीमित करना है, नमक जो है नमक का सेवन कम करना है, फिजिकल एक्टिविटी जो नियमित व्यायाम है आपको 30 मिनट रेगुलर करना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है, अपने आप को काम में बिजी रखना है। स्ट्रेस जो पहला बताएं, काम में बिजी रहने से स्ट्रेस कम होगा, खान पान पे ध्यान देना है, कोई भी आपको बीमारी है जैसे शुगर है, डायबिटीज़ है, अपने डॉक्टर से मिलकर उसको कंट्रोल रखिए। अगर आपको हल्की सी भी सिम्टम्स है, हल्का सा भी प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए, अपने तुरंत आसपास के जो डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, नहीं तो फिर हमारे हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में आके हम लोग से मिलिए। हल्का सिम्टम जो भी होता है हार्ट अटैक का, कभी कभी क्या होता है, जिसको आप साइलेंट किलर अभी क्या है, कभी पता चलता भी नहीं है, तो हल्का सिम्टम्स भी है उसको, गैस गैस समझ के बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, गैस गैस है तो उसको नहीं इग्नोर करना है, वो आके आप

0: नियमित रूप से उसकी
1: हाँ
0: जांच कराएं
1: जांच करवाएं
0: ताकि
1: रेगुलर,
0: जो
1: हाँ
0: शंका हो
1: रेगुलर
0: वो दूर
1: चेकअप,
0: हो। जी,
1: हाँ 6 मंथ
0: और जो
1: पे रेगुलर
0: समुचित उसका
1: चेकअप,
0: इलाज हो सके
1: हाँ,
0: वो
1: वो
0: किया जाए।
1: सबका।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले और हमारी गुजारिश है कि आप अपने पसंद का कोई एक गीत जो
1: अच्छा
0: आपका बहुत पसंदीदा गीत हो।
1: हाँ, एक गाना है ओ हंसनी, ओ हंसनी कहाँ तू चली गई, तो ये भी एक मेरा फेवरेट गाना है, तो इसको भी सुनाइए
0: जी
1: सबको।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, आपके इस गाने की फरमाइश को हम पूरा करेंगे।

0: और आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे जो श्रोता हैं उनके समस्या का समाधान किया, इतने अच्छे ढंग से उनके जो भी उनके मन की शंका थी उसको आपने दूर किया हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, और इस कार्यक्रम का हम प्रसारण करते हैं हर शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से, और इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार 3:30 बजे से 4 बजे तक।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अरुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे।

0: इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके

0: साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम पराग के अंतर्गत सुनिए कहानी और तिलस्म टूट गया। कहानीकार हैं पूनम सिन्हा श्रेयसी।
2: शीर्षक है और तिलिस्म टूट गया। अरे ये क्या हो रहा है, डायरी में अभी अभी लिखी मेरी कहानी के सभी अक्षर उड़कर कमरे में बिखर कर गायब हो गए। मैंने हैरत से डायरी के पन्ने को देखा, पन्ना तो कोरा है, कहाँ गई मेरी कहानी। अचानक एक आवाज आई, हैरान है। मैंने इधर इधर नजरें दौड़ाई, कोई भी तो नहीं था। फिर ये किसकी आवाज, कौन? मैं अनामिका, आपकी कहानी की नायिका हूँ। नायिका? आपकी कहानी जो आपने अभी अभी पूरी की थी? मेरी कहानी तो अब मिट चुकी है। हाँ, मैंने ही इसे मिटा डाला है। मगर क्यों? मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये कहानी मेरी है। मेरी कहानी लिखने से पहले मेरे बारे में जान तो लिया होता, या फिर आपने सब कुछ जानने के बावजूद उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया। तुम ही बताओ, क्या है तुम्हारी कहानी, सुनना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, ठीक है। पर इसे सुनने के लिए आपको मेरे साथ बहुत पीछे लौटना होगा। चलो, मैं कल्पना के घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार हूँ, तो सबसे पहले अस्पताल चलिए। अस्पताल क्यों? चलिए तो, सामने एक अस्पताल था, वहाँ जाकर वह ठहर गई। देखिए, इसी अस्पताल में मेरा जन्म हुआ था। तुम्हें कैसे पता? मेरी आंटी ने इसी अस्पताल का नाम बताया था। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? आज से 40 बरस 3 महीने 4 दिन पहले। इसी अहाते में 2 बजे रात में एक साये ने मुझे मेरी नई मम्मी के हाथों सौंप दिया था। नई मम्मी? हाँ, मुझे जन्म देने वाली माँ कोई और थी। मुझे देखकर नई मम्मी के खुशी का ठिकाना ना रहा। उनके बगल में नए पापा खड़े थे, वे भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर वे लोग मुझे अपने घर ले गए। धूमधाम से मेरे आने की खुशियाँ मनाई गईं। पापा मम्मी के सभी रिश्तेदार और मित्र आए थे। तुम्हारे आने से क्या सभी खुश थे? बहुत से लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग, लेकिन क्या, क्योंकि अब जायदाद की वारिस जो आ गई थी। ओ हाँ हाँ, धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी। मम्मी पापा मेरा लालन पालन बहुत अच्छी तरह कर रहे थे। मेरे हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। मम्मी का तो सारा समय मेरे साथ ही बीतता था। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे शहर के नामी स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया। और हाँ, बताती चलूं कि मैं पढ़ाई के अलावा गाना, डांस और पेंटिंग में भी अव्वल थी। मैं सभी टीचर की पसंदीदा स्टूडेंट थी। वे दिन बहुत मस्ती के थे, मेरे बहुत से दोस्त थे। सिर्फ अपनी तारीफें ही करती रहोगी या आगे भी कहोगी? बस वही तो मेरे सुनहरे दिन थे। क्यों? फिर पापा का तबादला महानगर में हो गया। वहाँ के बहुत नामी स्कूल में 8वीं कक्षा में मेरा दाखिला हुआ। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद वे सभी घूमते फिरते मौज मस्ती किया करते थे। फिर पहले तो मैं उनसे अलग थलग रहकर पढ़ाई किया करती थी, लेकिन बाद में मैं उनके उसी तिलस्मी दुनिया की चमक दमक में खो गई। आप सुन रही है ना? यह कहकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। क्या हुआ, आगे कहो। यहाँ के लड़के लड़कियाँ अक्सर नई नई गाड़ियों में स्कूल जाया करते थे। बर्थडे पार्टी में वे एक दूसरे को महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे। और तुम? मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी बर्थडे में उन्हें महंगे गिफ्ट दूं, लेकिन मम्मी पापा को ये पसंद नहीं था। वे कहते थे, ना तो तुम्हें इतनी महंगी गिफ्ट किसी से लेनी है और ना किसी को देनी है। मैं उनसे इस बात पर बहुत झगड़ा करने लगती, अपनी बात मनवाने के लिए खूब तमाशा किया करती। अंततः उन्हें मेरी बात माननी पड़ती थी। तुम्हारी सभी जायज नजायज बातें वे मान जाते थे? मानते कैसे नहीं। कभी मैं छत से कूदने की धमकी देकर छत की ओर भागती, तो कभी फल काटने वाले चाकू से कलाई को जख्मी जो कर देती थी। क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं था? था, लेकिन मुझे लगता था कि

कुछ पाने के लिए इतना तमाशा जरूरी था? और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही थी? मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किसी तरह मैं एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट हो रही थी। आगे क्या हुआ? मैं दिनों दिन बदमिजाज होती जा चली गई थी। मेरी शहद भरी जुबा अब वेब सीरीज में दिए जाने वाले गालियों के शब्दकोश का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगी थी। महंगे गिफ्ट देकर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती और उस पर अपना रौब झारा करती थी। मैं चाहती थी कि सभी मेरी तारीफें करें, मुझ पर ध्यान दे और मेरी हर बात को माने। कुछ समय के लिए वे मेरी सुंदरता और अमीरी को देखकर मेरे पास खींचे चले आते, लेकिन फिर मुझे इग्नोर करके किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते। मुझे कोई इग्नोर करे ये मैं सह नहीं पाती और उससे झगड़ा करने लग जाती थी। धीरे धीरे मैं जिद्दी और लड़ाकू के रूप में मशहूर होती गई। सभी दोस्त मुझसे पीछा छुड़ाने लगे। फिर मैं अकेली पार्क में जाकर बैठने लगी। यहाँ पर मेरे कुछ नए दोस्त बने और उनकी सोहबत में मुझे नशे की लत पड़ गई थी। ड्रग्स लेने के लिए बहुत से रुपयों की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए मैं कभी घर के कीमती चीजें मम्मी के गहने बेच देती तो कभी घर आए गेस्ट के पर्स से रुपये उड़ा लेती। ओ, तो तुम चोरी भी? हाँ, नशे की हालत ने मुझे बेहद कमजोर बना दिया था। मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। गाना, डांस, कविता, कहानी लिखने में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। पढ़ाई से तो मन कब का उचाट हो गया था। तो दिन भर क्या करती थी? बस ऑनलाइन खेला करती थी। नहीं लेने से मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। चिड़चिड़ाहट और गुस्सा चरम सीमा तक जा पहुंचता था। कभी कभी तो भयानक दौरा भी। उसने अपनी कलाई मुझे दिखाते हुए कहा, ये गहरे कटे निशान देख रही हैं? हाँ, ये कैसे? मैं खुद को ही जख्मी करने के लिए चाकू से काटने लगती थी। ओह माय गॉड, मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होती गई। मम्मी पापा मुझे काउंसलर के पास ले गए। वे लगातार मेरी काउंसलिंग कराते रहे। उसके बाद मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ दी गई और ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे। दवाइयाँ असर करने लगी थीं। धीरे धीरे मुझमें आत्म सम्मान का भाव जगने लगा था। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने सीधे साधे मम्मी पापा को कितना दुख पहुंचा रही थी। डिप्रेशन से उबरने के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया, लेकिन 3 साल के अनुभव भी कम कसैले न थे। सेशन के पहले साल में अपनी क्लासमेट के कजिन से दोस्ती हो गई। वह एक हैंडसम नवयुवक मोहित था। वह बहन से मिलने प्रायः कॉलेज आया करता था। मुझे उससे प्यार हो गया था और उसे भी। मैं उसके प्यार में डूबकर एक अलग दुनिया में जीने लगी थी। मैं हॉस्टल से निकलकर वहीं उसके साथ एक कमरे के फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रहने लगी। क्या तुम्हारे मम्मी पापा को इनकी भनक नहीं लगी? लगी थी। मैंने उनसे कह दिया कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें वो लड़का पसंद नहीं आया। क्यों? लड़का कोई जॉब नहीं करता था। उसके पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस था। उन्हीं के पैसों पर ऐश कर रहा था। फिर क्या हुआ? मैं भी जिद पे अड़ी रही। वह मुझे अपने घर भी ले जाने लगा। उसके मम्मी डैडी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे। उन्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। उनके व्यवहार से मुझे यही महसूस होता था कि ये लोग मुझे मम्मी पापा से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं और नौकरी करके आत्मनिर्भर बन जाऊं, फिर शादी। तो क्या गलत था? लेकिन उस लड़के और उसके घर वालों को मेरी नौकरी करना पसंद नहीं था। उनकी मंशा तो कुछ और थी। कैसी मंशा? असल में मैं उनके लिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी। तुम्हें ये पता था तो फिर क्यों तुम? नहीं, ये मेरे पेरेंट कहा करते थे कि मैं इकलौती संतान हूँ। उन लोगों की नजर मुझ पर नहीं, पेरेंट्स की संपत्ति पर है। और उस वक्त मुझे लगता उनकी ये सोच गलत थी। तुम्हारे पेरेंट्स का सोचना सही था शायद। वहाँ मेरे पेरेंट्स मुझसे अक्सर पापा की संपत्ति के बारे में टोह लिया करते और पूछते, शादी में मेरे पेरेंट्स कितना खर्च करेंगे। तुमने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हें उससे कोर्ट मैरिज करना है तो करो, हम अपनी जायदाद कैंसर पेशेंट के लिए ट्रस्ट के नाम कर देंगे, लेकिन इस शादी में 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। तुम्हारी जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। और इस लड़के पर तो हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लड़के वालों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? जब उनको इस बात का पता चला तो वे तुरंत अपने असलियत पर आ गए। वह लड़का भी बात बात पर मुझे ब्लैकमेल करने लगा।

अक्सर मुझसे झगड़ा करने लगता, मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। मैं कब तक बर्दाश्त करती। एक दिन गुस्से में आधी रात को उसके घर से चुपके से निकल गई और कभी वहाँ ना जाने के लिए वापस अपने घर लौट गई। उन लोगों ने तुम्हें आसानी से जाने दिया? वह फोन से मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकाने लगा, रुपयों की डिमांड करने लगा। उसके बाद मैं भी डरी नहीं, दबंग तो मैं पहले से थी। मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल की हवा खिलवा दूंगी। मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ कई एविडेंसेस है, तुम लोग बच नहीं सकते हो। मेरी धमकी का उस लड़के पर असर हुआ। कुछ दिनों बाद वह शांत पड़ गया। इस बार भी मम्मी पापा ने मुझे इस संकट से उबारा। उनका संबल पाकर मैं फिर से हिम्मत जुटाकर पढ़ाई में मन लगाने लगी। समय मुझ पर मेहरबान हुआ। शायद इतने दिनों तक दुख मुझे गढ़ रहा था, तपा रहा था, ताकि मैं कुंदन की तरह दमक सकूं। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। वक्त के थपेड़ों ने मुझे उनसे निपटना सिखा दिया था। मैंने

0: समय मुझ पर मेहरबान हुआ। शायद इतने दिनों तक दुख मुझे गढ़ रहा था, तपा रहा था, ताकि मैं कुंदन की तरह दमक सकूं। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। वक्त के थपेड़ों ने मुझे उनसे निपटना सिखा दिया था। मैंने अपने पेरेंट को बहुत दुख दिया था। कितनी बुरी थी मैं। वह धीरे धीरे सुबुकने लगी और मैं सोचने लगी, किसी का भी जीवन सीधा सपाट कहाँ होता है। इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कब किस मोड़ पर होश आ जाए, कब अपनी की गई गलतियों का एहसास हो जाए, पता ही नहीं चलता। उसने कहा, कहाँ खो गई आप? हाँ कहो तो, ये थी मेरी कहानी। क्या आप मेरी पूरी कहानी जानती थी? हाँ, मैंने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। मैंने महसूस किया कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया है। मैंने देखा सभी अक्षर फिर से प्रकट होकर इस कहानी के हिसाब से शब्दों में ढलकर पन्ने में सजने लगे हैं। एकाएक मेरी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। वही गहरे कटे कई निशान दिख रहे थे। तो क्या ये कहानी मेरी? मैं स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मेरी कलम अब किसी और की कहानी को लिखने के लिए मचल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और तिलस्म टूट गया। अभी आपने पूनम सिन्हा श्रेयसी की ये कहानी सुनी कार्यक्रम पराग में। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: घर सामानी कौशल्या देवी घांग पंचायत। गांव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गांव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है। बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे। मोहब्बत की कसम फिल्म से यह नगमा है। आवाज महेंद्र कपूर और अलका याग्निक के, इंदिवर कुलवंत जानी के बोल, कमलकांत का संगीत।

महेंद्र कपूर, अलका याग्निक और साथियों को आपने सुना फिल्म मोहब्बत की कसम में। इंदिवर कुलवंत जानी के बोल और कमलाकांत का संगीत। और अब महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और साथियों को सुनिए, फिल्म है प्रेम बंधन। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

प्रेम बंधन फिल्म में भी आपने महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को सुना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में एक अंतराल देंगे, सुनवाएंगे कुछ और नगमे।

0: फिल्म निकाह में भी आपने महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों को सुना, हसरत मोहनी के बोल और रवि का संगीत। फिल्मी नगमों का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर

दसवीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों से सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में यौम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे का माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सोनवर्षा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नव नियुक्त PDS डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुंशियात के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग छिड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि नशीली असिया से समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात, नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 जून इतवार को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में BE अथवा BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bsnl.co.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया।

भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में

0: प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेता

0: सेवाओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: For our business,
3: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के

0: लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 6 से 21 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। लव इन टोक्यो इस फिल्म से ये नगमा है, जिसके बोल हसरत जयपुरी के हैं। शंकर जयकिशन ने इसकी तर्ज बनाई है। आवाज मोहम्मद रफी ने दी है।

मोहम्मद रफी, अभी आपने इनको सुना फिल्म लव इन टोक्यो में। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और अब सुनिए सुमन कल्याणपुर के स्वर में ये गीत फिल्म बदतमीज से। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन की तर्ज।

बदतमीज फिल्म में अभी आपने सुमन कल्याणपुर को सुना, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और अब मोहम्मद रफ़ी को सुनवा रहे हैं। फिल्म है अमन, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन ने इसकी तर्ज बनाई है।

हो ए हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर, तुम ही मुझे पसंद हो।

फिल्म अमन में अभी आपने मोहम्मद रफी को सुना। हर्षद जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन ने इसकी तर्ज बनाई थी। इन्हीं के तर्ज पर अब हम सुन पा रहे हैं छोटी सी मुलाकात फिल्म से ये नगमा, जिसके बोल लिखे हैं हर्षद जयपुरी ने, आवाज मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को आपने सुना फिल्म सूरज में। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जय किशन का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लैंगिक अंतराल सुनवाएंगे कुछ और गीत।

मेरी हुजूर फिल्म में भी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुना। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और इसी के साथ संपन्न हुआ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आज है शुक्रवार। लेकर सूचनाओं और मनोरंजन का संसार आपके द्वार आ चुका है। आपका रेडियो साथी समेत इस समय दिन के 3 बज चुके हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रमों का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम। श्रीला
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: सहनी, दिल्ली से। हाँ,
0: शीला जी, क्या हाल चाल है शीला जी?
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात
1: हाँ
0: बताइए,
1: मैम,
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती हूँ।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ,
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चलना।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम, नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी।
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी।
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई है?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें, आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जिंदगी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी। पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना,
1: जी
0: अद्भुत है
1: मैडम
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तो से बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हाल
1: जी
0: चाल है
1: बढ़िया
0: आपके?
1: है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी,
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। वो रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाते भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ।
0: विविध,
1: बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाते भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।
1: देवी जी के मंदिर में लट सी बहारी आई, देवी जी के मंदिर

0: मांगी आई देवी जी के मंदिर में लट से बाती आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
0: जी दे
1: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी दे
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी। कोई
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की

0: जी, तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है, तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
1: ये
0: ऐसा
1: बहुत
0: मेरा
1: सही
0: मानना है।
1: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद।
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली जी,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमल कसर से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। जी
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से

0: प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज़ में झलक रही है। वैसे कल्पना
0: हाँ
1: जी,
0: जी जी
1: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
0: जी
1: किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
0: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
1: ये तो बहुत
0: और
1: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
0: जी,
1: सुनना चाहती हैं?
0: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
1: तो ये गाना
0: जी
1: गुनगुना के बताइए आप।
0: जी जी

0: रुबारे दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हाँ
0: मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी, विविध
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती
1: थोड़ा
0: हैं, व्यायाम करती हैं?
1: बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत कीजिए, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी। मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो
1: जी
0: हर महिला
1: मतलब
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: सुनिए
0: गीत।

0: को।
1: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं, 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी। उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था, दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंच

मिटा देता था। ये उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की। हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते घेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

0: गुजर जाए। दिन
1: तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिल फेंक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ

थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़ बुन में, इस असमंजस में,

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं।

उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है। इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी पटना। प्रोग्राम है युवाणी और अभी आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट और दोस्त नेहा वत्स को। और हमेशा की तरह दोस्तों, आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन के साथ। तो दोस्तों, हम हमेशा से सुनते आए हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसके अलावा कबीर दास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी दोस्तों, भाषा चाहे जो कोई भी हो, मतलब यही है कि समय का सदुपयोग ही सफलता का मूल मंत्र है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे जरूरी है, सबसे बेसिक है कि आप समय की कीमत समझें। क्योंकि समय की बर्बादी मतलब जिंदगी की बर्बादी। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ये जरूरी हो जाता है कि हम टाइम मैनेजमेंट के महत्व को समझें। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम अपने काम को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लेते हैं, तो काम एक बोझ जैसा फील नहीं होता, हम स्ट्रेस्ड नहीं होते और काम पूरा हो जाने

पर अचीवमेंट की फीलिंग आती है और इससे हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में भी पॉजिटिव सुधार आता है। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ आइए दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा ट्रैक श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में अभी हमने सुना मेट्रो इन दिनों मूवी से ये ट्रैक। और अब आइए दोस्तों सुनवाते हैं प्रोग्राम में आपको कुछ संदेश।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जो है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। सिरी यानवा पंचायत से ओम

0: राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्रीआमा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: एक बार फिर से स्वागत है आपका युवाणी प्रोग्राम में। और दोस्तों, अब आइए बात करें आज देश दुनिया में मनाए जा रहे इस्लामिक त्योहार मुहर्रम की। तो ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। ये शोक का समय है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कर्बला की जंग में हुई शहादत की याद में इस दिन को मनाया जाता है। ये महीना दोस्तों अन्याय के खिलाफ संघर्ष और कुर्बानी का प्रतीक है। दोस्तों, मुहर्रम हमें कर्बला की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जहां इमाम हुसैन ने सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। उन्होंने अन्याय के सामने झुकने के बजाय सच्चाई का मार्ग चुना था और पूरी दुनिया को साहस और आत्मसम्मान का संदेश भी दिया था। कर्बला की घटना केवल एक धार्मिक इतिहास नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, हमें सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जब इस समाज को प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की इतनी ज्यादा जरूरत है, मुहर्रम का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमें त्याग, धैर्य, करुणा और मानवता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए दोस्तों, इस मुहर्रम पर हम संकल्प लें कि हम सच्चाई का साथ देंगे, अन्याय का विरोध करेंगे और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपना अपना योगदान देंगे। और दोस्तों, हमारी बातें तो प्रोग्राम में आगे भी जारी हैं। अभी आइए सुन लेते हैं ये अगला ट्रैक।

0: AR रहमान और मोहित चौहान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रॉकस्टार मूवी से ये ट्रैक। और अब आइए दोस्तों सुनते हैं प्रोग्राम में कुछ संदेश।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाहर इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है, वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क बनी, मैं 2 बार मुखिया बनी।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को

0: मैं दो बार मुखिया बनी।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर, प्रखंड रोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिच्छा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: एक बार फिर से स्वागत है आपका युवाणी प्रोग्राम में। और अब आइए दोस्तों बात करें आज मनाए जा रहे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, हमारे आज के इस खास टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल आज की तारीख यानी 26 जून को मनाया जाता है। ड्रग्स के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक करने, साथ ही नशे की गिरफ्त से लोगों को बचाने के उद्देश्य से हर साल ये दिन एक नए एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की बात करें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग साल 2026 के लिए थीम है वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेज, इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज। दोस्तों, नशा केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक चुनौती भी है। ये शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर सकती है, साथ ही मानसिक स्थिरता को भी कमजोर करती है। इससे रिश्तों को नुकसान पहुंचता है, अपराध बढ़ता है और युवाओं से तो उनका पूरा का पूरा भविष्य ही छिन जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में ये वैश्विक कार्रवाई और सहयोग को मजबूती देने के लिए इस दिन की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आगे प्रोग्राम में तो हमारी और भी बातें जारी हैं, अभी आइए सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम में ये अगला ट्रैक।

हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज में अभी हम सुन रहे थे ये ट्रैक। दोस्तों अब आइए बात करते हैं, आपको बताते हैं कुछ रोचक तथ्य, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। तो कुछ जानवरों से जुड़ी चीजें आपको बताते हैं, जानवर साथ ही कुछ बर्ड्स यानी चिड़ियों से जुड़ी चीजें आपको बताते हैं। दोस्तों उल्लू जो है वो अपनी गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन उसकी आंखें जो होती हैं उस टाइम भी अपनी जगह पर लगभग स्थिर सी ही रहती हैं। हाथी दोस्तों एकमात्र ऐसा मैमल है जो कि कूद नहीं सकता। जिराफ की जो जीभ है वो लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, और यही कारण है कि वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा लेते हैं। दोस्तों पेंगुइन जो है वो उड़ नहीं सकते, हालांकि वो बर्ड हैं बट वो उड़ नहीं सकते, लेकिन वो पानी में बहुत तेज और बहुत ही कुशल तैराक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑक्टोपस जो हैं उनके 3 दिल होते हैं। ये है शॉकिंग, पर इससे भी शॉकिंग ये है कि उनका जो खून है वो नीले रंग का होता है। तोते दोस्तों कई बार हमने नोटिस किया होगा वो हमारी आवाज़ की नकल कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ आवाज़ की नकल ही नहीं कर सकते, तोते की कुछ प्रजातियां जो हैं वो शब्दों को पूरे इमोशन के साथ जोड़ना भी सीख सकते हैं। चमगादड़ जो है दोस्तों वो एक ऐसे मैमल हैं जो कि अकेले ऐसे मैमल हैं ये जो कि उड़ सकते हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं वो डांस करके, उनके डांस को हम बोलते हैं वैगल डांस, वो इस माध्यम से दूसरी मधुमक्खियों को भोजन की दिशा और दूरी बताती हैं। डॉल्फिन जो है वो एक दूसरे को पहचानने के लिए एक अलग, एक बहुत ही स्पेशल सीटी जैसे एक अलग सी आवाज़ों का उपयोग करते हैं जो कि उन लोगों के लिए एक नाम की तरह है। तो दोस्तों है ना कुछ अजीब से अलग से बातें ये सारे। अब आइए ना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम में ये आखिरी ट्रैक।

बिनी दयाल और शर्ली सेठिया की आवाज़ में अभी हम सुन रहे थे अ जेंटलमैन मूवी से ये ट्रैक। और इसी के साथ दोस्तों अब स्टूडियो की घड़ी ने कर दिया है इशारा, हो गया है समय हमारे जाने का। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और अब दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट और दोस्त नेहा वत्स को।

युवानी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती के सुननिहार लोगिन के संगीता के प्रणाम, कहीं सभे का हाल चाल बा। आज हम कुछ ऐसन विषय बा जिकरा पे कि रुआ सभे से हम बात कहल चाहब। आज हमने के बात करब नशीली पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी जे बा ओकर खिलाफ जोन बा हमने के जागरूकता के बारे में। देखिए कहल जाला कि कितना जिंदगी जे बा वो तबाह हो जाला, बर्बाद हो जाला। नशा ऐसा चीज है, नशीला पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी एगो गंभीर समस्या बा हमनी के समाज के, हमनी के बीच। एकरा खिलाफ जागरूकता फैलावल जरूरी बा। युवा के भविष्य के सुरक्षित राखल बहुत जरूरी बा। नशा से का प्रभाव पड़ेला हमनी के शरीर पर तनिक जानलो भी जरूरी बा। जैसे ड्रग्स के सेवन से तांत्रिका तंत्र जेबा हृदय फेफड़ा गंभीर ओकरा के नुकसान पहुँचाएला। यहाँ तक कि हम कहब कि यादाश्त कमजोर होखेला और मानसिक बीमारी जेकरा के हमनी के डिप्रेशन कहिला और एंजाइटी भी हो सकता। और साथ साथ कहब कि भाई जे सामाजिक और आर्थिक बर्बादी हम कह सकते हैं कि नशा से परिवार टूट जाला और रिश्ता खराब होखेला और ये व्यक्ति के आर्थिक स्थिति कह सकते हैं कि पूरा तरह से जेबा वो तहस नहस नष्ट हो जाला। और नशा के तस्करी समाज में अपराध हिंसा और गैर कानूनी गतिविधि के बढ़ावा देवेला और यह देश की सुरक्षा अर्थव्यवस्था

के बड़ा नुकसान होखेला। ऐसे देखिए बचाव खातिर भी बहुत जरूरी बा कि युवा से जे भी घर परिवार बा अधिक से अधिक जे बा एक घर के माहौल होए के चाहिए। खेल बा, कला बा, संगीत बा, बहुत ऐसा चीज बा जेकरा के हम अपना जीवन में शामिल कर सकते नहीं। और लिखना बा, पढ़ना बा, जेकरा से कि आदमी रचनात्मक कार्य में अगर व्यस्त रही तो सचमुच नकारात्मक जो एक दिमाग में जो घर कर जाला इंसान के, वो चीज़ से हमनी के दूर रहा। और सही सही बात एक और चीज़ बा कि कहाला कि भाई मतलब संगति जे बा यह माई बाप के हरेक माई बाप के देखे के कि लइकन के संगति कैसन बा, उ केकरा जोरे उठत बैठत बने यह पर नज़र हमेशा जोन बा जे भी गार्जियन बारे वहाँ सब एक रखे के चाहिए कि संगति अगर अच्छा हुई ना तो निश्चित तौर पे आदमी जे बा वो संगति के जो गुण आ दोष बा ये दोनों देखे में आवेला। तो ऐसे ऐसा लोगों के साथ उठना बैठना अपन बच्चन के ना करे के चाहिए। और एक कहावत भी बार हुआ सब सुनले हो कब कि नशा नाश के जड़ है। सही बात बा, नशा जे बा वो नाश के जड़ बा, काहे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, धन सामाजिक प्रतिष्ठा के पूरा तरह से जे बा नष्ट कर देवेला। और एकरा खाते जोन बा हमनी के कहब कि भाई ऐसे दूर जाए खातिर धीरे धीरे धीरे धीरे जोन बा नशा के छोड़ देवे खाती जरूरी बा इच्छा शक्ति जोन बा वो मजबूत होए के चाहिए। जबले जे व्यक्ति बा जे नशा कर रहा बा जबले वो ना सोची कि हमरा ऐसे दूर जाए के बा तो निश्चित तौर पर वह कितना भी कुछ कर ले हब तो कहीं ना कहीं कुछ समय खाती वो छूटी, बाकी हमेशा खाते हैं। तो अगर हमेशा खाती छूटे के बा तो कहल जाला कि काउंसलिंग मतलब कई तरह से वो व्यक्ति के समझाए के हुई, एमें हमनी के अहम भूमिका हो जाला। हमनी के घर के परिवार के समाज के भी हम कहब कि बहुत बड़ भूमिका बा कि इस चीज़ से अपन आवे वाला पीढ़ियन के बचाएल जाओ और आगे उनकर खुशहाल जिंदगी खातिर हमनी के कहीं न कहीं जोन बा वो जिम्मेवारी बनता कि नशा से हमेशा हमनी के दूर रखल जाओ। और देखिए जैसन कि हम कहब कि भाई नशा पे तो बातचीत तो हो गई और हमने के कई ऐसा विषय बाजे हमेशा ओकरा पर बातचीत करी लग। तो आज जैसन रुआ जाना तनी कि राउ मन पसंद भोजपुरी फिल्मी संगीत के आज के दिन बा राउरे फरमाइश पर। और आज हमने के सुनब जा पहला गीत जे बा ओ कब हुई गवनवा हमार फिल्म से बा। तो आई हमने के सुनल जाओ

0: हूँ। बसे मोरा तो हरे में प्राण मोरी रानी हो, तू ही मोरा जिंदगी जहान मोरी रानी हो। बसे मोरा तो हरे में प्राण मोरी रानी हो।
1: बहुत ही सुंदर बसे मोरा प्राण तोहरे में, बहुत ही सुंदर गायक रहने मोहम्मद रफ़ी और गायिका जेबा, और साथ में हम मुबारक बेगम। तो चलिए आगे भी हमने के गीत गवने सुनब जा, लेकिन अभी हमने के सुनब जा कविता पाठ कवि बानी रत्नेश्वर प्रसाद। तो आई सुना जाओ यहाँ से कविता पाठ।
2: अपने लाले के हमाइल बानी, भोजपुरी के कुछ गजल कुछ कविता सुनल जाओ। चली हंसी खुशी के बहाना ढूंढल जाओ, यार आपन कौनो पुराना ढूंढल जाओ। बैंक खाता के दूरी अबे मिटावल जाओ, बैंक खाता के दूरी अबे मिटावल जाओ। चली चुकिया के खजाना ढूंढल जाओ। गुल्ली टाँड कबड्डी कबड्डी आउर पटका पटकी, उहे फूलौना के चली जमाना ढूंढल जाओ। बेटा पढ़लक घर छूटल परदेसी हो गईल, लईकाई के फोटो सब सिरहाना ढूंढल जाओ। हो हल्ला के गीत बाजा से माथा फाटत बा, चैन के खातिर पूरन का गाना सुनल जाओ। रत्नेश्वर कुकुर बिलाई संग ही आइल बा, रत्नेश्वर कुकुर बिलाई संग ही आइल बा, रहे साथे ओकनी कौनो ताना बाना ढूंढल जाओ। अगिल की रचना बा, दिया के जरावत चलल जा रहल बा, अजोरा से लेकिन छलल जा रहल बा। मरले बा सगरे नात रिश्ता के पाला, यहाँ से वहाँ तक धकत जा रहल बा। महका गईल मन के खुशबू से बगिया, महका गईल मन के खुशबू से बगिया, लोगवा कहेला बिगड़ल जा रहल बा। देवता ले बदल के पूज लेलक जे मनई, देवताले बदल के पूज लेलक जे मनई, लिखंत ओके कहवा टलल जा रहल बा। आइल भोर देखी खोल के आपन पाजा, आई भोर देखी खोल के आपन पाजा, रत्नेश्वर अजूरिया फैलल जा रहल बा। अगिल की गजल बा, अपने ला बिका रहल बा खेत जोताई के करे, बिका रहल बा खेत जोताई के करे, टूट रहल बा घर पोताई के करे। तेज हवा में खर हो गईल वजूद, तेज हवा में खर हो गईल वजूद, जिंदगी कटल पतंग लटाई के करे। टिकल लेब देब पर रिश्ता दुनिया के,

टिकल लेब देब परिश्ता दुनिया के, सबका जैसन पाई पाई के करे। छुअल जाओ जहवा दर्द जाग जाला, छुअल जाओ जहवा दर्द जाग जाला, चिधरी भइल पर्दा तुरपाई के करे। रत्नेश्वर के सपना में दुलारे ली, माई से बढ़ के भलाई के करे। अगिल की रचना एगो गजल, हम अपना अंदर ना देखनी तो कतहू ईश्वर ना देखनी, हम अपना अंदर ना देखनी तो कतहू ईश्वर ना देखनी, चमक दमक ई देहिया बहकल बुढ़ौती के आपन बिस्तर ना देखनी। भेटात गईल लोग दुख के ढोवत, केहू के हम कमतर ना देखनी। सुनावे के रहे कुछो हमरो लगे, सुनावे के रहे कुछो हमरो लगे, केहू के सवास मगर ना देखनी। रत्नेश्वर शिकायत हजार मिलल, रत्नेश्वर शिकायत हजार मिलल, हम आपन परतर कतहू ना देखनी। अब अपने के हम ले चल रहल बानी कविता के तरफ, प्रवासी जीवन पर आधारित। एकर शीर्षक बा बहुते याद करीले हो, समझई हा हुनका के परदेश में बानी, समझैया हुनका के परदेश में बानी, हमरे माथा पर बा हुनके ओढ़नी के आकाश, हमरा थाकल गोड़ के तलवा पथराइल माटी के मुलायम बना देवेला हुनकर याद, जियल आसान क देवेला हुनका से मिले के आसरा। कहिय अब की फागुन में आईब, बचा के रखी हैं अपनो अखिया के लोर, संग ही रोअल जाई सुनल जाई कोयली के कुहुक, अब ही परदेश में बानी। ई हमर आगे बा रचना जौन, वो अपने सुनल जाओ, बहुत अच्छा लागी ग्रामीण जीवन के एमे वर्णन बा। चाचा शीर्षक कविता, हमरा बाहर से भीतर आ भीतर से बाहर दूनू ओरी बाड़न हमार चाचा, ठीक कौनो सुनर छायावादी कविता के परिभाषा लेखा। हम देखले बानी आपन चाचा के कोय गो रूप, ठीक ओही जैसन जे लेखा आवे जाएला मौसम रुके वाला ना। हमरा अबहियों याद बा ओ समय पट्ठा जवान रहस रहलन हमार चाचा, हम रहनी उनका कान्हा पर चाचा के कन्हैया चढ़ के, द्वार से सतुआड़ा ले हुनका गोड़ से तय कैल गईल दूरी, अबहियों बा हमरा जिंदगी के सब ले नीमन यात्रा कथा। ऊ समय श्री रामचरित मानस के सुंदर कांड जैसन रहल हमार घर संसार, हम देखले बानी चाचा के हमार भूख से लड़त, माट साब के मुटकी बेत से बचावतो, हमरा ला रात के बसिया कोदो के भात पर गरम दाल नियन रहलन हमार चाचा, हमरी कठुआइल देही पर गाती लेखा। हम देखले बानी चाचा के मगज के गरमात, केहू समझा देले रहे हुनका घर में मेख भइला के मतलब, तबे रुक गइल रहे दौनी आ ओसौनी के घड़ी सूपा से झरत दाना लेखा, छितरा गइल रहे हमनी के परिवार, पैया खखरी हो गइल रहे हमनी के संबंध, तबो हमरा ला आन ना भइले हमार चाचा, बंटवारा में सात कट्ठा खेत अधिका ले लें बादो मटलन ना हमार चाचा, थोड़के समय में चाचा देख लेलन पटीदारी बेकारी और दुनियादारी, लोग कहत सुनत रहे कम पढ़ल लिखल बाड़न हमार चाचा, आपन भाई लोग से हम पढ़ के ई जननी, बेकार बा दुनिया की सब डिग्री चाचा के सोझपन के आगा, आजू के अबूझ समय

आ बिना बीमा बधि के कठिन जीवन यात्रा में दुटूक बोललन हमार चाचा, ना जानी कौना माटी के बनल बाड़न, आजो साँच बोललन। और अपने ला ई अंतिम रचना, एकर महत्व ई बा कि अभी चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल के हमनी के 150वीं जन्म जयंती मनावतनी। चंपारण में अंग्रेज नीलवर के जे अत्याचार रहे, किसान आंदोलन रहे, ओ पृष्ठभूमि पर संक्षेप में एगो ई रचना बा। हम अपने के अनुमति से एकरा के सस्वर पढ़े के कोशिश करतनी। नीलहा के आगे लाचार भइल बहिनी के भाई, भाई बस हरिया कोठिक राह भइल सब गाह, बचते बचत फंसी जात मछरिया, फाटे आकाश न फाटे धरतिया, टुक टुक देखे गुरियन के इजतिया, माथ के से नूर पर नील चढ़ल, करिया भइले जिंदगी के सूरतिया, नीलहा के आगे लाचार भइल बहिनी के भाई, भाई बस हरिया, कारिख लगाई के घूमे तिरिया, ताकि पड़े न पापी नजरिया, चारू ओरी आन्हार बा फैलल, सूझे न ओ में कौनो डगरिया, नीलहा के आगे लाचार भइल। अंतिम रो रो के कहली माई बहिनिया,

0: भाई, बाते बात माहुर पियल बा भाई, नैहर से चुनरिया कब आई, नैहर से चुनरिया कब आई।
1: अभी हमने के सुनत रहनी जा कविता पाठ कवि रत्नेश्वर प्रसाद से। ये कविता पाठ कहते यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद कहते नहीं। तो जैसन के रुआ समय से वादा रहे कि भाई हमने के आज जोन बा भोजपुरी फिल्मी संगीत सुनब, तो आज चली एगो औरी हमने के गीत सुनल जाओ। फिल्म बा गंगा किनारे मोरा गांव।

कहे के तो सभे केहू आपन आपन कहाए वाला के बा। सही बात बा भाई। मतलब जोन सुख और दुख के जोन समीकरण बा, तो सचमुच मतलब यह दुख में और सुख में ही पता चलेला कि आपन के बा। बड़ा ही सुंदर बोल, बड़ा ही सुंदर स्वर गायिका रहनी उषा मंगेशकर। तो बड़ा ही अर्थपूर्ण गीत रहल हा। चले गीत गवने से मन कबू ना भरे, तो आई एगो और हमने के गीत सुनल जाओ।

बहुत मार्मिक गीत रहे, अभी हमने के सुनने जाए कि दुल्हा धीरे धीरे चला ससुर गड़िया। तो सही में अब देखिए समय भी हमने के उड़ा रहा बा, तो आज सभी के होके यानी मोहम्मद रफ़ी, आशा, उषा मंगेशकर और चंद्रानी मुखर्जी के बहुत बहुत धन्यवाद कहते नहीं। और अब जेबा हमने के यहाँ से विदा चाहब, तो संगीता के दिविदा सभी के होके प्रणाम।

आरती, अभी आप ये भोजपुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर 10 मिनट पर फिल्म संगीत।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे 6:30 पर और शाम 7 बजे का समय होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का। सात बजकर 30 मिनट पर प्रादेशिक समाचार और 7:47 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नाबार्ड आम महोत्सव 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, वाचन संकलन संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।

8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प, स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आज की रात फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। 10:30 पर पुनः आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय भोजपुरी में समाचार सुनी। गृह मंत्री अमित शाह आजु नशा के खिलाफ इकट्ठा होके लड़े के गुहार कैले आ कहले कि नशीला पदार्थ के कारोबार देश के सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हित आ जवानन के भविष्य खातिर खतरा बा। वहीं आध्यात्मिक नेता जुआ आ माई लोगन से ई अभियान में मिलल जुल के भाग लेवे की अपील कैलन। श्री शाह ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD के 10वें शीर्ष स्तरीय बैठक के संबोधित करत कहलन। गृहमंत्री कहलन कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीला पदार्थ से जुड़ल अपराध के जानकारी समय पर साझा करे खातिर कईन गो ऑनलाइन पोर्टल शुरू कैले बा। वहाँ सब राज्यन के मुख्य सचिव आ पुलिस महानिदेशक लोगन से इन्हन पोर्टल पर नशा से जुड़ल मामला के जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करे खातिर कहलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार 28 जून की आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश लोगन से अपन विचार साझा करिहन। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी हुई। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी या दूरदर्शन के सब चैनलन पर, AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कैल जाय। संगे संग AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आ सूचना आ प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी एकर सीधा प्रसारण होई। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और जवाबदेही के बढ़ावा देवे खातिर आज पटना लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक भइल। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के अध्यक्षता में भइल बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हाजिर रहलन। बैठक में सभी विश्वविद्यालयन में यही साल 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सब मॉड्यूल लागू करे के निर्देश दिहल गइल बा। यही दौरान नया बनल 211 गो सरकारी डिग्री कॉलेजन में सहायक प्राध्यापक लोगन के केंद्रीकृत बहाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमन से लागू करे, रिसर्च आ डिजिटल शिक्षा के बढ़ावा देवे पर बात भइल। बैठक में विद्यार्थी लोगन के रुकल डिग्री बांटे के काम 30 सितंबर तक पूरा करे के निर्देश दिहल गइल। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़न कि प्रदेश में मास्टर लोगन के ट्रांसफर के लेके सरकार गंभीर बिया। श्री तिवारी पटना में संवाददाता लोगन से बातचीत में कहले कि सरकार ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च कैले बा जिकरा से मास्टर लोगन के ट्रांसफर कैल आसान, पारदर्शिता आ भ्रष्टाचार से मुक्त होई। जदयू के

0: राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामला में कहले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एकरा पे कड़ी सुनवाई शुरू कर दिहले बाड़न। श्री झा पटना में संवाददाता लोगन से बातचीत में कहलन कि एनडीए सरकार राज्य में कानून आ व्यवस्था के मजबूत रखे खातिर पूरी तरह से तैयार बा। आज मुहर्रम के 10वीं तारीख हजरत इमाम हुसैन आ 72 गो साथी लोगन के शहादत के याद में योम ए आशूरा मनावल जा रहल बा। ए मौका पे प्रदेश के अलग अलग हिस्सन में ताजिया आ मातमी जुलूस निकालल जा रहल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया संदेश में कहलन कि हजरत इमाम हुसैन के बलिदान सच आ न्याय के रास्ता पे अड़िग रहे के सिख देवेला। राज्यपाल सैयद अता हसनैन प्रदेश के लोगन से पुराना भाईचारा शांति आ सदीक्षा के माहौल में मुहर्रम मनावे की अपील कैले बाड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन कि हजरत इमाम हुसैन के शहादत हमनी के इंसानियत त्याग आ सद्भाव के रास्ता पे चले के प्रेरणा देवेला। इन्हें मुहर्रम के लेके पूरा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनैले रखे खातिर सुरक्षा के बढ़न इंतजाम कैल गेल बा। पुलिस प्रशासन सब थानन के जुलूस वाला रास्ता पे सुरक्षा बढ़ावे के निर्देश देले बा। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर, पटना सिटी समेत 351 गो जगहन पर मजिस्ट्रेट के देखरेख में पुलिस बल तैनात कैल गेल बा। पटना समेत दक्षिण बिहार के कईन गो जिलन में बरखा भारी से लोगन की उमस आ चिलचिलात गर्मी से थोड़ी राहत मिलल बा। पिछला 24 घंटा में शिवहर, मधुबनी आ पश्चिम चंपारण के कुछ एक जगहन पर भारी बरखा भइल बा। मौसम विभाग के मुताबिक शिवहर में सबसे ज्यादा 112.4 मिलीमीटर बरखा भइल बा। विभाग कहले बा कि अगला 3-4 दिन में बिहार के बाकी हिस्सन में भी मानसून के आगे बढ़े खातिर माहौल निक लागत बा। सिवान के सिविल सर्वन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद मॉडल सदर अस्पताल में बनल रहल आईसीयू के जांच कैलन। 4 गो बेड वाला अत्याधुनिक आईसीयू के 30 जून तक शुरू करे के लक्ष्य रखल गेल बा। सासाराम डेहरी प्रखंड के 86 गो गांवन के बिहार के 12वां ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डेहरी में बसावल जाई। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलला के बाद यह महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चौड़ी सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल आ कारोबार खातिर अलग से व्यवसायिक इलाका विकसित कैल जाये। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं आई हैड लव स्टोरीज फिल्म का ये गीत, श्रेया घोषाल और सोनम मोहपात्रा की आवाज में। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं विशाल एन शेखर।

श्रेया घोषाल के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमन्त्री अमित शाहः मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रिय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्तेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडावार्तासु, यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रिय सुरक्षायै सामाजिक स्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशम शीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह अवोचत यत् चतुरोत्तर 2000 चतुर्दशाधिक 2000 पर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राम मितं संश्लेषित मादक द्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14,200 26,200 पर्यन्तं गृहीतानि संश्लेषित मादक द्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राम मितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादक द्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अंकैः ज्ञायते। मादक द्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादक द्रव्याणां अपराध सम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदान प्रदानार्थम् अनेकानि ऑनलाइन पटलानि विकसितानि सन्ति।
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करे।

0: देशौ वित्तीयसहयोगः रक्षा सुरक्षा प्रविधयः नवाचाराः संस्कृतिः शिक्षा तथा च परस्पर जनसम्पर्कः सम्मिलिताः सन्ति। ताभ्यां क्षेत्रीय वैश्विक परिदृश्यानां विषये अपि विचाराणां विनिमयीकरणं कृतम् तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु सहकार्यं वर्धयितुम् उपायानां विषये मन्त्रणा कृता। विदेशमन्त्रालयानुसारं द्वाभ्यां मन्त्रिभ्यां भारत दक्षिण कोरिया सम्बन्धेषु नूतन गतिशीलतायाः स्वागतं कृतम्। सहैव भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक सन्धिम् इतोपि अग्रे नेतुम् अविरतं सम्पर्के स्थातुं सहमतिः प्रकटीकृता। भारतस्य रौनक चौहानेन अद्य फुटलन नगरे यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां चीनी ताइपे इत्यस्य पुरुष एकलस्य क्रीडकं चाउ तिएन चेन इत्येतं 1:17.24 अंकैः पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे पदार्पणं कृतम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार आनंद भाई,
1: नमस्कार मंगरू भाई।
0: की हाल आनंद भाई?
1: हाल चाल सब ठीक है? अपन कहा
0: हमरो हाल चाल बढ़िया छे।
1: हाल और चाल दोनों बढ़िया है ना?
0: हाँ हाँ, गर्मी छे तो गर्मी के महीना छे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, गर्मी रहे
0: देखो आई उना खास दिन छे, मुहर्रम जे छे से मनायल जा रहा है। मुहर्रम जे छे से जना इस्लामी कैलेंडर, सबके कैलेंडर होइ छे, इस्लामी कैलेंडर के पहिल महीना छे मुहर्रम। एहि महीना के इस्लाम में बड़ पवित्र मानल जाइ छे। मुहर्रम विशेष रूप से पैगम्बर मोहब्बत के नवासा इमाम हुसैन आ हुनक संगी लोकन के करबला के लड़ाई में भेल शहादत के स्मरण कर शोक मनायल जाइत अछि।
1: बिल्कुल सही कहला मंगरू भाई। इस्लामी वर्ष यानी हिजरी वर्ष के
0: हाँ।
1: पहल का महीना है। हिजरी वर्ष के आरंभ ये महीना से होबे है। ये महीना के इस्लाम के चार गो पवित्र महीना में से एक मानल जाए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ये महीना के अल्लाह के महीना कहल कहल। साथ ही साथ ये महीना में रोजा रखे के भी खास अहमियत है। मुफलिस हदीस यानी हजरत मोहम्मद के कथन आओ अमल यानी कर्म से मुहर्रम के पवित्रता और एकर अहमियत के पता चला है। एक बार हजरत मोहम्मद मुहर्रम के जिक्र करते कहलका कि एकरा अल्लाह के महीना कहल जाए। ई एकरा चार गो पवित्र महीना में रखलका, जकरा में से दो गो मुहर्रम से पहले आवे है आ ई दो महीना है जोकादा आउ जिलहिज। एगो हदीस के अनुसार अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद कहलका है कि रमजान के अलावा सबसे बढ़िया रोजा उ है जे कि अल्लाह के महीना में यानी मुहर्रम में रखल
0: जाए।
1: ई कहते समय नबी ए करीम हजरत मोहम्मद एगो आउ बात कहलका कि जे तरह से अनिवार्य नमाज के बाद सबसे अहम नमाज तहज्जुद के है, उहे तरह रमजान के रोजा के बाद सबसे बढ़िया रोजा मुहर्रम के है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के पहल का महीना है। एगो इत्तेफाक के बात इहो है कि आज मुहर्रम के ई पहलू आम जन के नजर से बिसर गए है और ई महीना में अल्लाह के इबादत करना चाहिए, जबकि पैगंबर इस्लाम यह महीना में खूब रोजा रखे और अपन साथी के ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करल का।
0: देखियो आनंद भाई, ये मुहर्रम जे छे से ये खुशी के पावन नहीं छे, एकरा अन्याय के खिलाफ बलिदानक रूप में याद कयल जाय।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात हम कहे जा रहल कि
0: सिया, हाँ, सिया समुदाय के मुसलमान हाँ। महीना के पहिल 10 दिन मातम मनबे छे, कारी वस्त्र धारण करे छे आ तजिया निकाल इमाम हुसैन के शहादत के शोक व्यक्त।
1: शोक जी है कर लेल मंगरू भाई कि इराक स्थित करबला एगो घटना होबल हल वहाँ जकरा में अपन जान ने

0: और करना बड़ी सवाब के काम मानल गेले हन। ई दिन के घटना में हजरत मोहम्मद के नवासा यानी नाती हजरत हुसैन के शहीद कर देवल गेल हन। ई मौका पर याद करते ताजिया यानी मुहर्रम के जुलूस भी निकालल जा हई। ई दिन शिया मुसलमान इमामबाड़ा में जा करके मातम मनावे हखिन और ताजिया निकाले हखिन। मुहर्रम के 10वां दिन के आशुरा कहल जा हई। आशुरा के दिन ही हुसैन साहब के और उनकर बेटा और घर वाला के और उनकर साथी लोग के करबला के मैदान में शहीद कर देवल गए। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करे वाला लोग के एगो प्रमुख त्यौहार है। सन 680 में होबल ई युद्ध हजरत हुसैन साहब और इब्न जाद के बीच होबल हल। इब्न जाद के कमांडर सिम्र हजरत हुसैन रजी आ उनकर सभी 72 साथी परिवार वाला आदि के शहीद कर दिलका हल, जकरा में हुसैन साहब के 6 महीना के पुत्र हजरत अली असगर भी शामिल हलका। तभी से मुसलमान धर्मावलंबी लोग उनकर शहादत के गम में मुहर्रम मनावे लगल।
1: अब देखिए आनंद भाई,
0: हाँ
1: ये तो हम सब गप के मुहर्रम के संदर्भ में उना आई एक और खास दिन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है।
0: हाँ सही बात है।
1: सब साल 26 जून का दुनिया भर में मनाए
0: मैंने आज के दिन
1: आइए के दिन एक मुख्य उद्देश्य है लोग के नशा के दुष्प्रभाव सब बचेनाय आ संगे अवैध ड्रग्स व्यापार के खतरा के प्रति जागरूक से होकर।
0: भाई नशा के जैसे ही बात कर रहा है और साथ में ड्रग्स के बात हो गया है तो उकर व्यापकता और गहराई समझल जाए के चाहिए बात के कि ड्रग्स वास्तव में इतना खतरनाक है कि जे एक बार उकर सेवन कर लेलक वो समझा कभी उकर से निकल नहीं पा रहा और उकर जिंदगी बर्बाद हो गेल, आर्थिक भी, शरीर भी, जीवन भी, सब कुछ। तो निश्चित रूप से जब 26 जून के जो हमनी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मना रही है उकर उद्देश्य भी है कि हमनी ये सब नशा से दूर रही और मुक्त रही।
1: एक आदमी के नशा पान के कारण परिवार बर्बाद भयो।
0: हाँ
1: तो कहलो गेल छे ने नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार।
0: बिल्कुल,
1: अतः लेल जरूरी छे नशा से मुक्ति। नशा मुक्ति से शारीरिक स्वास्थ्य के सुधारल जा सके छे, संगे ऐसे मानसिक शांति भेटे छे आ उज्जवल भविष्य के निर्माण होई छे। नशा व्यक्ति के जीवन ओकर परिवार आ समाज के बर्बाद कर दे छे और तें ऐसे दूर रहब जरूरी छे।
0: देखा मगरू भाई, कहल गेल है नशा नाश के जड़ है। नशा एगो व्यापक विश्वव्यापी समस्या हो गेल है। लगभग सभ्य देश नशाखोर से परेशान हखी। कहे कि जे कहल गेल है ना कि नशा नाश के जड़ है, ये एकदम सही है। सुलहो आना सही, 100% सही हम तो कहम। कोई भी नशा करके अपन नाश करे है, समाज और परिवार के नाश करे है और सरकारी या कहल जाए कि सार्वजनिक तंत्र पर बोझ बन जाए, समस्या बन जाए। तो ई विश्वव्यापी समस्या के गंभीरता के देखते हरेक साल आज ही के दिन हमनी यानी 26 जून के मादक पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनावे। एकर उद्देश्य लोग के नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना और एगो नशा मुक्त समाज के निर्माण करना है। एकर शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 के पारित प्रस्ताव के बाद से ई दिवस प्रतिवर्ष 26 जून के मनावल जाए लगल। एकर उद्देश्य है कि नशा के लत से ग्रस्त लोग के पुनर्वास करल जाए और अवैध ड्रग्स के तस्करी रोकल जा सके ताकि युवा एकर गिरफ्त से बच सकत की। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश के सभी जिला में नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं।
1: ये नशा मुक्त भारत अभियान से आनंद भाई मने खास कर हम एक कहब कि युवा लोकन जे एकर गिरफ्त में आबे छथि, नशा के गिरफ्त में, ओइसे बचाव के लिए अभियान है। तो सरकार द्वारा जे चलाएल जा रहा है अभियान, अ के अंतर्गत युवा लोकन के नशा से बचेबा के लिए स्कूल, कॉलेज आ सामाजिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कैल जाते हैं।
0: अब देख कि मादक पदार्थ के दुरुपयोग एगो वैश्विक चुनौती बन गए है मगरू भाई, जे कि चुपचाप लोग के नुकसान पहुंचा रहे है, परिवार के तोड़ रहे है और समुदाय के कमजोर कर रहे
1: तहस नहस कर रहे।
0: हाँ, एकर प्रभाव नशा के लत से ज्यादा आगे तक है। ई एगो स्थायी तौर पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचावे है। ई ऐसन बढ़ते जा रहल चिंता के कारण ही संयुक्त राष्ट्र महासभा 7 दिसंबर 1987 के निर्णायक कदम उठेलक और 26 जून के अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनावे के निर्णय लेलक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB पिछलका कई एक वर्ष से समन्वित राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से मादक पदार्थ के तस्करी और दुरुपयोग के नेटवर्क के तोड़े के अथक प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि लोग एक से मुक्त रहें।

0: दायित्व हमने के भी है कि
1: हाँ
0: उस
1: सही
0: फकरा
1: है,
0: में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए उस अभियान में, और लोग के प्रेरित करें कि भाई नशा से दूर रह, मुक्त रह।
1: असंगे जे जे गोटे नशा के गिरफ्त में आब चुकल छे हुनका गिरफ्त से हटाबा द्वारे हुनकर पुनर्वास के लेल जे कहल जाय छे ना अंग्रेजी में एकटा शब्द छे रिहैबिलिटेशन, आई में जे छे से पुनर्वास में मदद करक चाही आ
0: बिल्कुल
1: एकटा
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ नशा मुक्त समाज के निर्माण केनाय बड़ जरूरी अछि।
0: देखो, ऐसा तो कहल गेल है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपने कंठी माला। लेकिन
1: हाँ
0: ऐसा जब भी समस्या आवा है तो हमने भजन गेबे करे कि भाई
1: हाँ
0: भगवान
1: हाँ
0: हमने के बचावा।
1: बचाव।
0: आज ईश्वर के, अल्लाह के इबादत के दिन तो है ये है, हमने कार्यक्रम में एक ठो भजन भी सुन के कार्यक्रम की शुरुआत कर ही
1: शुरू
0: बढ़िया
1: करे
0: से,
1: छे।
0: है ना। कार्यक्रम में आज जो लोकगीत सुना रहलखी हैं, कलाकार हखी निशा कुमारी।
1: सुने छी इनका सा ये लोक भजन।
0: नदीम श्रवण का एंजॉय कीजिए, नदीम श्रवण का ये संगीत, और बने रहिए हमारे साथ।

0: वाह
1: वाह।
0: वाह मंगरू भाई, ये हलखी निशा कुमारी
1: निशा कुमार
0: है ना, इनका से कार्यक्रम में आगे भी सुनल जाए गीत, बढ़िया सुनल खी गीत। अभी सुनल जाए वार्ता एक ठो।
1: हाँ
0: वार्ता के विषय है ड्रोन तकनीक और इसके लाभ। वार्ताकार हखी डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा।
1: देखो कि जे छे जेना जेना विज्ञान विकास करे छे,
0: हाँ हाँ
1: तो पहिने जे छे से जेना कहल जाइ छलै मेन पावर, तब मेन पावर से हटि के आब जे छै से मशीन पावर बेसी चलै छै।
0: बिल्कुल।
1: आ ओ मशीन की कर सकैया ओकर एकटा मने जे जानकारी हम सब लै छी ओ अहि वार्ता के माध्यम से, ओ मशीन अछि ड्रोन। तो सुनी हम सब ई वार्ता।
2: ड्रोन जनता में एक लोकप्रिय नाम है, विशेषकर युवाओं में ड्रोन को लेकर आकर्षण है। मानव रहित हवाई वाहन जिसे पृथ्वी से ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है या हवाई जहाज उड़ाने के जैसा आनंद देता है। ड्रोन के पीछे की तकनीक सामान्य मोटर और प्रोपेलर के अलावा विभिन्न सेंसर पर आधारित है। ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए विमान को जोर देने के लिए प्रोपेलर का उपयोग किया जाता है। प्रोपेलर की मदद के लिए मोटर दबाव बनाती है। चूंकि ड्रोन का संचालक दूर से नियंत्रण करता है, इसलिए सेंसर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूरी सेंसर, उड़ान का समय सेंसर, स्थिरीकरण, ओरिएंटेशन सेंसर आदि ड्रोन को उड़ान भरने के लिए अच्छे नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए ड्रोन का एक और महत्वपूर्ण पहलू बैटरी है। शोर या प्रदूषण न फैलाने वाले ड्रोन वर्तमान समय के लिए बेहद उपयुक्त हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषकों को खत्म करना है। ड्रोन बैटरी से चलने वाली मूक उड़ान वाली वस्तुएं हैं जो प्रकृति के अनुकूल हैं। आज मैं एक व्यावसायिक परियोजना के रूप में ड्रोन की उपयोगिता के बारे में बात करूँगा। इससे हमारे युवा भाइयों को ड्रोन के सेवा आधारित व्यवसाय शुरू करने का मन बनाने में मदद मिलेगी। हमारे किसान मित्रों के लिए मैं कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से होने वाले लाभ के बारे में बात करूंगा। मैं ड्रोन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ड्रोन के अन्य महत्वपूर्ण उपयोगिता पर भी बात करूंगा। बाजार में विभिन्न उपयोग के लिए 5 प्रकार के ड्रोन उपलब्ध हैं। एक है 200 ग्राम से कम वजन वाले नैनो ड्रोन, दूसरे हैं माइक्रो ड्रोन जो 200 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के होते हैं, छोटे ड्रोन 2 किलो से 20 किलो, मीडियम ड्रोन 20 किलो से 150 किलोग्राम वजन वाले, और बड़े ड्रोन इनका वजन 150 किलो से ज़्यादा होता है। ड्रोन को उनकी उड़ान क्षमता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से मेल हेल, टैक्टिकल, क्लोज और हैंड हेल्ड, इन 5 नामों से जाना जाता है। मेल ड्रोन की ऊंचाई क्षमता 9100 मीटर तक होती है, जबकि इसकी दूरी सीमा 200 किलोमीटर तक होती है। हेल 9100 मीटर से अधिक की ऊंचाई की क्षमता वाला होता है और यह अनिश्चित दूरी को कवरेज कर पाने में सक्षम है। टैक्टिकल ड्रोन 550 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और इसकी दूरी सीमा 160 किलोमीटर तक होती है। क्लोज ड्रोन 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और यह 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। हैंड हेल्ड ड्रोन यह 600 मीटर तक की ऊंचाई को तक जा सकता है और इसकी दूरी सीमा 2 किलोमीटर की होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में ड्रोन कारोबार के लिए भारतीय बाजार 1 अरब रुपये का था। यह 2027 के अंत तक 2.13 अरब रुपये तक

पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान है। यानी 5 साल में ड्रोन का बाजार 200% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाजार के विकास के रुझान बहुत ही आकर्षक हैं और हमारे युवाओं को ड्रोन सेवाओं या निर्माण को अपने उद्यम के रूप में चुनना चाहिए। भारत सरकार ने अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए विशेष उपाय किए हैं। MSME विभाग ने अगस्त 2021 में PIL नाम की एक परियोजना शुरू की है। अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक विशेष सहायता अभियान के तहत MSME ने ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 221 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किया। ये कंपनियां आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और विश्व स्तर पर अपने उत्पाद का मार्केटिंग कर पाने में सक्षम है। ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली लोकप्रिय भारतीय कंपनियां इन्फो एज लिमिटेड, रतन इंडिया इंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य हमारे युवाओं द्वारा संचालित कई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जोमेटो ने ड्रोन द्वारा भोजन वितरित करने के लिए लखनऊ स्थित स्टार्टअप कंपनी टेक ईगल का अधिग्रहण किया है। इसलिए हमारे युवाओं के लिए ड्रोन के क्षेत्र में नित नए बिजनेस के रास्ते खुल रहे हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, दुनिया उनका इंतजार कर रही है। कृषि क्षेत्र हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने और इनपुट लागत कम करने के लिए ड्रोन का उपयोग महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग विभिन्न उपयोगी उद्देश्यों में किया जा सकता है, जैसे पौधों के स्वास्थ्य की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पौधों का निरीक्षण, पानी की आवश्यकता, मिट्टी की जांच, हवा से बीज बोना, फसलों पर छिड़काव कार्य आदि। अच्छे खाद्य उत्पादन के लिए फसल के स्वास्थ्य की निगरानी, जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण उनका रंग बदलना या कीट संक्रमण से फसल की क्षति आदि काफ़ी आवश्यक है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाले ड्रोन आपके कृषि क्षेत्र की संपूर्ण स्वास्थ्य तस्वीर उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसमें लगभग नहीं के बराबर कुछ समय लगता है और लागत भी अधिक नहीं है, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए स्थानीय ड्रोन ऑपरेटर से बहुत कम लागत पर कार्य को कराया जा सकता है। ड्रोन द्वारा फसल की समय पर उचित वृद्धि की निगरानी की जा सकती है और उर्वरक या कीट प्रबंधन कार्रवाई के उपयोग के लिए उचित निर्णय लिया जा सकता है। ड्रोन आपको फसलों की उचित ऊंचाई या घनत्व बता सकता है। बढ़ते पौधों में पानी की आवश्यकता की निगरानी महत्वपूर्ण है। ड्रोन आपको जलवायु के अनुसार आपकी बढ़ती फसलों की पानी की आवश्यकता का डेटा प्रदान कर सकता है। ड्रोन द्वारा खेत के जल संकट वाले भाग को वैज्ञानिक रूप से जाना जा सकता है एवं इसका समाधान किया जा सकता है। ड्रोन की सहायता से पौध पोषक तत्व प्रबंधन का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। पौध पोषक तत्व प्रबंधन की कमी के कारण खाद्य उत्पादन दर कम हो जाती है। यह हमारे देश में कृषि का एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसकी निगरानी ड्रोन के इस्तेमाल से की जा सकती है और जिला या ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग को इस विषय पर काम करना चाहिए। इस कार्य के लिए पंचायत स्तर पर पहल की आवश्यकता है। हवा से सटीक और शीघ्रता से बीज बोने की क्षमता वाले ड्रोन उपलब्ध हैं, इससे कार्यबल लागत भी कम हो सकती है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लोगों के रुझान के कारण कृषि में कार्यशील जनशक्ति की कमी कृषि क्षेत्र में संभावित ऑटोमेशन की मांग करती है। कार्यबल की कमी की इस समस्या का समाधान भी ड्रोन है। फसलों को कीट से मुक्त कराने के लिए रसायनों का छिड़काव ड्रोन कम लागत वाला सुरक्षित समाधान है। कभी कभी पौधों की ऊंचाई अधिक होने के कारण रसायन का मैनुअल छिड़काव मुश्किल होता है, इसलिए ड्रोन उस स्थिति का समाधान है। ड्रोन त्रिआयामी फोटो और वीडियो के लिए भी काफ़ी चर्चित है। सोशल मीडिया पर हम आम तौर पर खतरनाक पहाड़ या तेज बाढ़ के पानी की वीडियो देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं

0: कि इसे महंगे हेलीकॉप्टर से शूट किया गया होगा, लेकिन अब यह वीडियोग्राफी ड्रोन से की जा रही है। सामाजिक समारोहों में अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो और वीडियो के लिए ड्रोन का इस्तेमाल आजकल आम होता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई पर स्थित बिल्डिंगों का हवाई सर्वेक्षण और आपातकालीन दवाएं आदि भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के उपयोग से कठिन इलाकों का सटीक वैज्ञानिक सर्वेक्षण संभव हो गया है। गूगल हमें दुनिया के किसी भी हिस्से का सही लोकेशन उपलब्ध कराता है। गूगल गो एक बहुत ही लोकप्रिय ऐप है। इसका सटीक डेटा संग्रह ड्रोन के उपयोग से ही संभव हो सका है।
1: नंदन भाई,
2: हाँ हाँ,
1: ड्रोन सब की सब संभव छे से कतेक बढ़िया जानकारी दे रहे डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा।
2: देखा, विज्ञान के जितना भी आविष्कार है ओकरा में लगा है कि ड्रोन सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी आविष्कार के
1: आविष्कार।
2: ड्रोन से हमने कौन काम नहीं कर लिया। अभी तो युद्ध के जो समय है,
1: हाँ।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध छिड़ल है ओकरा में ड्रोन के तो बहुत प्रयोग हो ही रहे हैं। खेती के किसानी के काम में भी ड्रोन के प्रयोग हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी हो रहा है, दवा पहुंचाने में प्रयोग हो रहा है। कौन काम
1: बाकी है आपदा के समय में से हो कते काज करे माने कते रंग बिरंग के ऐसा लाभ छे। धन्यवाद दियन डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा के उनका ये वार्ता के लिए। ड्रोन तकनीक और इसके लाभ आके विचार आगा गीत सुनल जाए।
2: देखा भाई, डसे उसे के बात मत करिए।
1: अच्छा, अब निशा कुमारी की कह रहा है उनके से सुनिए।
2: सुन लो जाए गीत एक ठो। हाँ।

0: मंगरू भाई,
1: हाँ आनंद
0: गीत
1: भाई,
0: हमने सुन रही है, अंगूरी में डसले बिया नगिनी है।
1: पूर्वी छ
0: बढ़िया गीत है, मिश्रा
1: बढ़िया गीत
0: कुमारी के धन्यवाद तो दे देवल जाए।
1: हाँ
0: लेकिन एकर साथे चौपाल के समय भी समाप्त हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमनी खेती गृहस्थी के संबंध में बात विचार करम।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: मंगरू भाई, कहा खेती में क्या की हो रहा है?
1: आनंद भाई, सोचे छी कि खेती के अलावे आमदनी के लिए किछ आर कैल जाए। मधुमक्खी पालन केहन रहते?
0: अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने गीत सुन ली तो वो डसे के बात कर रहा है, अब डंक मारे वाला के तू बात करे लगला।
1: ना ओई के संगे मध से हो
0: आमदनी भी है।
1: आमदनी से हो जुड़ल छे ना।
0: हाँ तो भाई, अब
1: आमदनी में कई तकलीफ तो उठावे पड़े छे,
0: कहल जाए दुधारू गाय के मार सहना।
1: हाँ हाँ तो ई पूछलिया कि मधुमक्खी पालन जे छे से आमदनी के लिए केहन रहते?
0: देखा बढ़िया रहत, मधुमक्खी पालन एगो कृषि उद्योग है। मधु परागण आदि के प्राप्ति लगी मधुमक्खी पालन करल जा है। मधुमक्खी तो पारंपरिक रूप से भी हमनी के शहद
1: हाँ।
0: देते रहले हैं, निकाले वाला लोग वो तकनीक जाना है रहती कि कैसे निकाल लेवल जाए।
1: वो तो निर्भर करे छे माने मधुमक्खी के स्वभाव पर, जो छत्ता
0: हाँ।
1: कत लगात, लेकिन जहन मधुमक्खी पालन वाला बात हेतु, व्यवसाय
0: हाँ।
1: वाला बात
0: हाँ।
1: हेतु, तो वो तो अपना तरीका से
0: तो मधुमक्खी फूल के रस के शहद में बदल के सिंगारा हकीन और अपन बनावल छत्ता में जमा कर रखी।
1: हाँ।
0: जंगल से मधु एकत्र करे के परंपरा लंबा समय से रहले है। बाजार में शहद और एकर उत्पाद के बढ़ल जाए तो मांग गुनी, मधुमक्खी पालन अब एगो लाभदायक और आकर्षक रोजगार के रूप में स्थापित हो गए है। मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है।
1: हाँ।
0: मधुमक्खी कीट वर्ग के सामाजिक प्राणी है, जो कि झुंड में रहे है। ये झुंड में एगो रानी और 100 गो नर और शेष श्रमिक रहे हैं। एगो छत्ता में मंगरू भाई एकर संख्या लगभग 20,000 से 50,000 तक हुआ है। मधुमक्खी के बिना परागण संभव नहीं है और जब परागण नहीं होवत तो कोई भी फल फूल से नहीं बनत। मधुमक्खी के अलावा रॉयल जेली माने मधुमक्खी जे पालन करल जाए तो ओकरा से मधु के अलावा रॉयल जेली, मोम, पराग और मौनी विष एकरा से पावल जा है, जे कि आय के बढ़िया साधन है। माने मधुमक्खी पालन करे के चाहिए, जरूर करे के
1: जरूर।
0: बक्सा रहे है,
1: हाँ हाँ
0: बक्सा में मधुमक्खी पाल कर करके अब बढ़िया आमदनी पावल जा सके है। मधु के नियमित सेवन से तपेदिक, अस्थमा, कब्जियत, खून के कमी और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बीमारी से बचल जा सका है या सुरक्षित रह जा सका है। रॉयल जेली के सेवन करे से ट्यूमर नहीं होबा है और स्मरण शक्ति भी बढ़ा है और आयु भी बढ़ा है, यानी मनुष्य दीर्घायु होबा की। मधु मिश्रित पराग के सेवन करे से प्रोस्टेटाइटिस के बीमारी नहीं होबा है। मौनी विष से गठिया, बतास और कैंसर के दवाई बनावल जा है। बी थेरेपी से असाध्य रोग के निदान करल जा है। मधुमक्खी पालन में कम

0: में कम लागत और कम ढांचागत पूंजी निवेश के जरूरत होवे है। कम उपज वाला खेत से भी शहद और मधुमक्खी के मोम के उत्पादन करल जा सके है। मधुमक्खी खेती के कोई भी दूसर उद्यम से संस्थागत प्रतिस्पर्धा नहीं करे है। मधुमक्खी पालन के पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मधुमक्खी कई गो फूल वाला पौधा के परागण में मुख्य भूमिका अदा करा है। पारंपरिक रूप से मधुमक्खी के अलावा अब तो बक्सा रख के भी मधुमक्खी पालन करल जा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीका से विधिवत मधुमक्खी पालन के काम 18वीं शताब्दी से शुरू हो गए हल। पहले पहल सन 1789 में स्विट्जरलैंड में फ्रांसिस ह्यूबर एकरा प्रारंभ करल का। फिर सन 1851 में अमेरिका निवासी पादरी लैंगस्ट्रॉथ प्रारंभ करल का। सन 1857 में मेहरिंग और सन 1865 में ऑस्ट्रिया के मेजर डी होरस का और सन 1882 में कॉलिन रानी एकरा शुरू कैल का हल।
1: कुल मिला के जे छै से मधुमक्खी पालन के पूरा ई संपूर्ण इतिहास अपने
0: हाँ, ओकर बाद ई जे है व्यवसाय के रूप में, आधुनिक
1: व्यवसाय के
0: व्यवसाय के रूप
1: रूप
0: में मधुमक्खी पालन अपना लेवल गेल।
1: हाँ, तो एहिमे मुख्य रूप से देखल जाए तो जे मधुमक्खी के किस्म होइ छै, प्रजाति भेले, ओ कोन प्रजाति के रहक चाहिए, तो एपिस मेलिफेरा सँ बेसी मात्रा में शहद भेटै छै। एहि के संगे मधुमक्खी पालन के लिए जे एकटा सामान्य जे शुरुआत करय के लेल जे तरीका होइ छै, ओहि में एकटा लकड़ी के बक्सा भेले, ओहि के संगे संगे मधुमक्खी नहीं काटे तैं लक फेस मास्क भेले, दस्ताना भेले, स्मोकर जैसे कि धुआं क के मधुमक्खी के हटा के
0: भगाया।
1: हाँ, आ मध निकाल मने छत्ता के नुकसान पहुंचेने बिना मध निकालक के जे मशीन होइ छै, एहि सब के जरूरत होइ छै।
0: बिल्कुल,
1: संगे संगे मधुमक्खी पालन के लेल जे मने एकटा प्रशिक्षण होइ छै ओ बहुत जरूरी छै। आ ई प्रशिक्षण जे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र छै
0: वहां से
1: ओतय भेटै छै, या राज्यक जे खादी या ग्राम उद्योग बोर्ड छै ओहिसँ संपर्क कयल जा सकैए प्रशिक्षण ली। आ नीक आमदनी के लेल मधुमक्खी पालन अवश्य करी।
0: मंगरू भाई,
1: हाँ,
0: जानकारी तो अपने बढ़िया दिलखी। अच्छा ये बताओ, एगो बात आओ हट के कर रही हो, मैं काम काज के बात से हट के, लगन के समय चल रहे हैं, शादी ब्याह में न्योता तो मारिए रहा हो।
1: न्योता तो आबते छे, शादी ब्याह के समय छे, अब कतौ से बजायल जेतै, हम नहि जेबै तऽ हमरा ओहिठाम यदि कोनो आयोजन हेतै तऽ की हेतै।
0: बिल्कुल सही बात है, तऽ खैहा थोड़ा बचिए के, लेकिन जहां भी जइए वहां ई चर्चा जरूर करिए कि भाई दहेज लेना और देना दोनों अपराध,
1: लेनाय देनाय बंद करू,
0: दोनों बंद कर।
1: हाँ,
0: एगो गीत सुनल जाए एकरे पर, दहेज प्रथा गीत, कलाकार हकी निशा कुमारी
1: सुनै छी।

0: मगरू भाई, हमरो
1: दंक
0: बेटी कब ले रही? ये दहेज के दंश है, दहेज के डंक है।
1: छे।
0: ओकरा से ये व्यथा निकल रहा है माई के कि बेटी कब तक कुमार रहता मर। तो
1: हाँ
0: दहेज प्रथा गीत हमने सुन ली। गीत तो अच्छा है, दहेज प्रथा बुरा है। ओकरा से बच्चे के
1: का
0: चाहिए
1: विरोध करक चाही। बदलाव
0: विरोध।
1: समाज में बदलाव आबि रहल छै, चेतना आबि रहल छै, लेकिन एखनो एहि पर काज करक के जरूरत छै।
0: बिल्कुल। अब एगो वार्ता सुनल जाए। बागों में वृद्धि नियामकों का प्रयोग। वार्ताकार हखी डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा।
1: सुनै छी हम सब।
2: पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को ही प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन कहते हैं। ये पौधे के विभिन्न अंगों में बहुत ही लघु मात्रा में पहुंचकर उनकी विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। यह मुख्यतः प्रकृति में पौधे में अपने आप से तैयार होता है। अगर उनमें सही देखभाल की जाए तो पौधे में यह खुद से बनता है। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि बागवानी फसलों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बागवानी फसलों में हार्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फल वृद्धि से लेकर के फल पकने तक की सभी अवस्थाओं में इसका योगदान रहता है। फल वृक्षों में कई बार देखा गया है कि विकास में उसकी प्रॉपर विकास या वृद्धि नहीं होती है, रुक जाता है वृद्धि। फल एवं फूल झड़ने की समस्या आती है और इस कारण से पौधे किसान भाई अक्सर ये समस्या लेकर के आते हैं कि हमारा फलन नहीं हो रहा, फल झड़ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसान भाइयों को कृत्रिम हार्मोन का उपयोग करने का सलाह देते हैं, क्योंकि कृत्रिम हार्मोन का उपयोग करके भी हम प्राकृतिक हार्मोन के तरह ही फायदा ले सकते हैं। मुख्यतः जो हार्मोन पाए जाते हैं इसके जो रूप हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्कॉर्बिक एसिड और इसलिन, इन रूपों में ये पाया जाता है। लेकिन किसान भाइयों को मैं एक एक चीज़ करके इस पर विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूँगा। हार्मोन का उपयोग जो होता है जड़ों से विकसित करने से लेकर कलिकाओं को नियंत्रित करने तक में होता है। तो सबसे पहले मैं आम के बारे में अगर बातचीत करूं तो आम के फसलों में जो अभी के मुख्य फसल अभी आम है, फूल आने लगी है, मंजर आने लगी है, फूल झड़ने की समस्या अक्सर किसान भाइयों को आती है। अक्सर किसान भाई कहते हैं कि हमारे आम तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं। उस स्थिति में किसान भाई को मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि उस स्थिति में नेफ्थलिक एसिटिक एसिड की 200 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से इसमें हम नियंत्रित पा सकते हैं। ये जो नेफ्थलिक एसिड एसिटिक एसिड आता है ये बाज़ार में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग नामों से आता है। प्लानोफिक्स के नाम से आता है। प्लानोफिक्स की 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में डाल करके अगर पौधे पर हम छिड़काव करते

करते हैं, जब मटर के आकार के दाने का आम में फल लगा हो तो बहुत हद तक हम इसको आम के फल को गिरने से बचा सकते हैं। देखिए किसान भाई को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्राकृतिक रूप से आम तो झड़ने की समस्या होती है, क्योंकि जितने फूल आते हैं उसके 0.1% ही फल में बदलते हैं, तो कुछ हद तक तो फल गिरेंगे, लेकिन आर्थिक आमदनी प्राप्त करने के लिए एक डंठल के ऊपर कम से कम 7 से 8 फल होना जरूरी है, तभी हम लोग को आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो नींबू के वृक्षों में भी आप देखते हैं किसान भाई अक्सर ये कहते हैं कि हमारे फल गिर जा रहे हैं, तो नींबू में अगर फल गिरने की समस्या आती है तो किसान भाई ये कर सकते हैं कि उनके अगर प्रॉपर देखभाल किया हो, अगर सही तरह से पोषक तत्व और पानी की पूर्ति की गई हो पौधे में, उसके बाद भी अगर गिरने की समस्या आ रही है, इसका मतलब उनके पौधे में हार्मोन के इम्बैलेंस हो रहा है, हार्मोन की समस्या आ रही है, कमी हो रही है, तो उसी स्थिति में किसान भाई क्या करेंगे, 2,4-D की 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे क्या होगा, छिड़काव करने से बहुत हद तक उनके फल के गिरने की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर कोई किसान भाई संतरे की खेती करते हैं तो उसमें पक्के के फल गिरने की समस्या आती है, आधे पक्के फल गिरने की समस्या आती है, उस स्थिति में भी 200 मिलीलीटर नेफ्थलिक एसिड का छिड़काव करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अमरूद के वृक्ष पर लगे हुए फूलों पर नेफ्थलिक एसिटिक एसिड की 600 ppm की मात्रा को अगर हम छिड़काव करते हैं तो अमरूद के फल में फल के बैठने की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होती है और फल में शाइनिंग भी आती है। किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा, जो ppm मैं बता रहा हूँ 600 ppm, इसका मतलब होता है 1 ppm बनाने के लिए 1 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में डालने से 1 ppm बनता है, तो जितना भी ppm बताना होगा उतना मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे तो उतना ppm हमारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप बेर के फसलों में अगर हम देखते हैं तो बेर के फसल में अभी फल आने की प्रक्रिया चल रही है, फल वृद्धि की प्रक्रिया चल रही है, तो बेर के किस्मों में अगर हम जिब्रेलिक एसिड की 30 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो बेर में भी फल गिरने की समस्या का समाधान हम लोग कर लेते हैं। तो और दूसरा चीज़, एक और समस्या किसान भाई अक्सर कहते हैं कि हमारा फल एक तरीके का नहीं पकता है, पूरा एक तरीके का पका नहीं, आधा पकता आधा नहीं पकता है, जैसे केला में अक्सर ये समस्या आती है, तो फलदार पौधों में पकने की समस्या अगर आ रही हो तो अगर अच्छा से पकाना चाहते हैं किसान भाई, एक तरीके का कलर लाना चाहते हैं, तो उस केस में इथेफोन दवा आती, इथेफोन की 500 ppm का घोल अगर पौधे पर छिड़काव करते हैं तो उस केस में भी हम क्या होता है कि पूरा फल एक तरीके का पकता है और उनके बाजार मूल्य भी उनको अच्छा मिलता है। उसी तरह के हम देखा जाए कि खजूर के फलों में जहाँ पर खजूर की खेती होती है वहाँ 1 ग्राम इथरेल का 1 लीटर पानी में घोल का अगर छिड़काव करते हैं तो फल का आकार भी बड़ा अच्छा होता है और वजन भी उसका बढ़ता है। इथरेल भी एक तरह का हार्मोन है जिससे फल का आकार बढ़ाने और वजन बढ़ाने में सुविधा होती है। उसी तरह अंगूर के गुच्छों में, बहुत लोग अंगूर के गुच्छों में क्या होते हैं गिरने की समस्या आती है, आकार नहीं बढ़िया से बढ़ता है, तो जो भाई किसान भाई अंगूर के गुच्छे लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, वो जिब्रेलिक एसिड का आरंभिक अवस्था में गुच्छे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो उससे भी उनका सीडलेस जो अंगूर होता है उसका मंजर अच्छा बैठता है और 80% फूल जो होता है फल में बदलता है। इसी तरह पपीते के बीजों में अगर सही अंकुरण हम चाहते हैं, पपीते में भी क्या होता है अंकुरण की समस्या आती है, जब हम बाग लगाने जाते हैं तो अंकुरण की समस्या आती है, उस केस में भी हम किसान भाई को सलाह देते हैं कि 200 ppm जिब्रेलिक एसिड से अगर उपचारित करके बीज को लगाएंगे तो उसमें अंकुरण अच्छा होगा। पपीता में अक्सर समस्या आती है कि 40 से 50% अंकुरण रह जाता है क्योंकि उसमें हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उस केस में अंकुरण 70 से 80% करना हो तो उसको हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम उसका 200 ppm से उपचारित करके हम उसके अंकुरण प्रतिशत को भी हम बढ़ा सकते हैं। किसान भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हार्मोन्स का इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब भी हम कृत्रिम रूप से हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमको कुछ बातों को ध्यान रखने की बहुत नितांत ही आवश्यक है। जैसे पादप नियंत्रक जितने भी हार्मोन होते हैं उसका सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने पर वैज्ञानिक सलाह के बिना अगर इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर फायदे के बदला नुकसान होने की भी समस्या रहती है। तो ऐसा किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी हार्मोन का इस्तेमाल करें सही मात्रा में वैज्ञानिक से जानकारी लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। जितने भी फलों में पादप नियंत्रण का अलग अलग मात्रा में जरूरत पड़ती है, हर एक फल में अलग अलग मात्रा पड़ती है, तो कम या ज़्यादा मात्रा हमको इसको ध्यान रखना होगा फल में उपयोग करते वक्त, और सही समय दोनों चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। सीधे जल में हार्मोन अक्सर घुलनशील नहीं होते, सीधे पानी में वो नहीं घुलते, तो उस केस में हमको क्या करना होगा कि हमें हार्मोन को किसी अम्ल में घोल करके उसके बाद सही मात्रा में पानी में मिला करके तब छिड़काव करना होगा। ठीक है, अक्सर किसान भाई क्या होता है पानी में घोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें घुलता नहीं है और वो किसान भाई कहते हैं कि हमसे सही काम नहीं हुआ या सही दवा हम छिड़काव नहीं कर पाए, तो किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर इसको घोला जाए तो कोई भी हमारा जितने भी हार्मोन है कृत्रिम हार्मोन आराम से घुलता है, तब सही छिड़काव हम किया जा सकता है।
उसी तरह छिड़काव का समय का बहुत महत्व है। किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा कि दोपहर में किसी भी प्रकार

हार्मोन का छिड़काव ना करें, किसान या तो सुबह 8 बजे के आसपास छिड़काव करें या सायंकालीन 3 बजे के बाद इसका छिड़काव करें। इससे क्या होगा, हार्मोन का असर पौधे पर बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाई को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा ये सब तो कृत्रिम हार्मोन है, अगर लेकिन हम चाहते हैं कि हार्मोन को प्राकृतिक रूप से तैयार रूप में इस्तेमाल कर, जैसे आजकल प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, तो उस केस में किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक रूप से हार्मोन अगर पौधे में तैयार करवाना हो तो उसके लिए किसान भाई को जीवामृत का इस्तेमाल पौधे में अगर करते हैं 5 लीटर प्रति प्लांट के हिसाब से, तो पौधे में जो प्राकृतिक रूप से हार्मोन का सिक्रेशन अच्छे होता है, अच्छा होता है, पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होता है। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा जीवामृत बहुत ही सरल है, जो घर में वो बिना कोई खर्च के बना सकते हैं। जीवामृत बनाने का जो सबसे सही तरीका है उसमें 10 किलोग्राम ताजा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 मुट्ठी पौधे की मिट्टी, जो कि किसी पेड़ के नीचे छांव की मिट्टी हो, इसको 200 लीटर पानी में घोल बना के 8 से 10 दिनों तक, गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में 12 दिनों तक इसको घोल को मिलाते रहते हैं।

0: रूप से हार्मोन अगर पौधे में तैयार करवाना हो तो उसके लिए किसान भाई को जीवामृत का इस्तेमाल पौधे में अगर करते हैं 5 लीटर प्रति प्लांट के हिसाब से, तो पौधे में जो प्राकृतिक रूप से हार्मोन का निकल सिक्रेशन अच्छे होता है, अच्छा होता है, पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होता है। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा जीवामृत बहुत ही सरल है, जो घर में वह बिना कोई खर्च के बना सकते हैं। जीवामृत बनाने का जो सबसे सही तरीका है उसमें 10 किलोग्राम ताज़ा गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 मुट्ठी पौधे की मिट्टी जो कि किसी पेड़ के नीचे छांव की मिट्टी हो, इसको 200 लीटर पानी में घोल बना के 8 से 10 दिनों तक, गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में 12 दिनों तक इसको घोल को मिलाते रहते हैं, हर दिन सुबह शाम मिलाते हैं, तो ये जीवामृत हमारा तैयार हो जाता है। इस जीवामृत को छान करके प्रति पौधे के हिसाब से 5 से 6 लीटर के आसपास पौधे के हिसाब से अगर हम देते हैं तो पौधे में स्वतः प्राकृतिक रूप से हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है और पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होता है। तो किसान भाई को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि कोशिश अक्सर किसान भाई करें कि प्राकृतिक जो हार्मोन का सेक्रेशन पौधे में हो तो उससे उसका नियंत्रण करना, पौधे का वृद्धि विकास करना ज़्यादा आसान है बजाय कृत्रिम रूप से इस्तेमाल करने के। तब तक किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो भी हार्मोन का इस्तेमाल करें वैज्ञानिकों के सलाह से करें और सही मात्रा में और सही समय पर करें।
1: बागों में वृद्धि नियामकों का प्रयोग, ये वार्ता हमने सुन रही है। डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा बढ़िया जानकारी दल के पर
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद दे देवल जी। अब
2: यदि समय छे तो गीत सुन ले जाए
1: कलाकार हखी निशा कुमारी
2: सुनी हम सब।

0: ई हलखी निशा कुमारी बढ़िया गीत हमने इनका से सुन ली आज है ना
1: एक सुना रहा चले था झूमर।
0: हाँ
1: इनका आज सब गीत के लिए मन से धन्यवाद दियन।
0: बिल्कुल।
1: और आनंद भाई हम देखो चल के समय भ गए आई चलब तो हम फिर क्या ले भेंट घाट हेत गपशप हेत
0: बिल्कुल कोई ना कोई तो रहे करते
1: हाँ, हाँ।
0: चौपाल लेकिन हरदम चलते रहते
1: चलते रहते तो चलक चाहिए
0: चले के चाहिए।
1: नमस्कार आनंद भाई।
0: नमस्कार मगरू भाई।

0: चौपाल और खेती गृहस्थी। अभी आप ये ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
2: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
2: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
2: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे

0: विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी
1: चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
0: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी

राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आज पटना लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष 31 दिसम्बर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नवसृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की केंद्रीकृत नियुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शोध एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्यार्थियों की लंबित डिग्रियों के वितरण कार्य को 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों के साथ मिलीभगत और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित उपाधीक्षक पर जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप है। जेल अधीक्षक की जांच में यह भी सामने आया है कि उपाधीक्षक की ओर से

0: बंदियों के परिजनों से पैसे लेकर उनकी ओर से लाई गई सामग्री को बिना सुरक्षा जांच के जेल परिसर में पहुंचाया जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितता के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे सरकार उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।
1: मैं सबके आस्था का जगह है राम, पूरे देश के लोगों का आस्था विश्वास राम जी में है। जो भी ये किया है निश्चित रूप से मुझे जरूर लगता है कि सरकार है और जब ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर दी है, इंक्वायरी कमेटी बना दी, उस पर कार्रवाई।
0: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। श्री झा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया, कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा करके मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं, और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया तो उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 है।
0: राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 90 अंचलाधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह स्थानांतरण विभागीय वार्षिक तबादला नीति के तहत किया गया है। इससे पहले विभाग ने 60 अंचलाधिकारियों का तबादला किया था। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राजस्व एवं भूमि प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विभागीय स्तर पर जून माह में वार्षिक तबादलों की व्यवस्था लागू की गई थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, इससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा।
3: शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करा करके और उनके स्थानांतरण नीति को सरल कर दिया है, और स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वो अपना आवेदन जब पोर्टल पर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में, ये स्थानांतरण करने की हमने योजना बनाई।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसे देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद श्री यादव ने कहा कि एनडीए सरकार न्याय के साथ विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी कथित मुठभेड़ मामले में सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन

0: AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। श्री कुमार ने नालंदा जिले के नूरसराय में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और खेती अधिक लाभदायक बनेगी। उन्होंने किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में योम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सोनवर्षा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में आज पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 17 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बना लिए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम T20 मैच रविवार को खेला जाएगा। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने मॉडल सदर अस्पताल में बन रहे ICU का निरीक्षण किया। 4 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ICU को 30 जून तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नव नियुक्त PDS डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के 7,000 से अधिक कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को निःशुल्क लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के परसोना गांव में आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात से कई घरों में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे।

0: उचित शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

bağ kurun.

Salamat.

0: युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 13 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे बांका और लखीसराय जिले के हलचल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तान्या सोमदीप चक्रवर्ती से गीत।

0: अभी आप तान्या सोमदीप चक्रवर्ती से गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं रूप कुमार राठौर के स्वर में अनवर फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं सईद और संगीतकार हैं मिथुन।

अगला गीत हमने लिया है साथिया फिल्म से। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अदनान सामी के स्वर में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है ER रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला गीत हमने लिया है जिस्म फिल्म से, श्रेया घोषाल की आवाजों में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं MM करीम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जहर फिल्म का ये प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, जिसके संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: श्रेया घोषाल के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं नाबार्ड आम महोत्सव 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, वाचन संकलन संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।
1: प्रस्तुत है नाबार्ड द्वारा बिहार राज्य सहकारी संघ बुद्ध मार्ग पटना में आयोजित दो दिवसीय आम महोत्सव 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 25 एवं 26 जून 2026 को बिहार राज्य सहकारी संघ बुद्ध मार्ग पटना में नाबार्ड आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। इस दो दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को शहरी उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ना तथा उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस आम महोत्सव में किसान अपने उत्पाद यानी विभिन्न प्रकार के आम जो कि जैविक खाद से तैयार हैं, जिनमें किसी तरह के कोई रसायन नहीं प्रयोग किया गया है, उनका प्रदर्शन और बिक्री इस मेला में कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा आयोजित इस आम महोत्सव में बिहार के विभिन्न जिलों से किसान भाग ले रहे हैं और उनके द्वारा आम के कई प्रजाति जैसे मालदा, दशहरी, लंगड़ा, अम्रपाली, बम्बैया, जरदालू, मल्लिका, लोकनायक, फजली, गुलाब खास, कृष्णभोग, हिमसागर और अन्य स्थानीय विशिष्ट किस्मों के आम उपलब्ध हैं। इस महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ उपलब्ध आम सीधे किसानों के बगीचे से उपभोक्ताओं तक पहुँचाए जा रहे हैं। बिक्री के लिए रखे गए आम रसायन मुक्त हैं, जिन्हें प्राकृतिक एवं सुरक्षित तरीके से पकाया गया है और उपभोक्ताओं को स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक आम आसानी से मिल रहे हैं। आज इस मेला में आकाशवाणी की टीम पहुंची और हमने बात किया नाबार्ड के कुछ अधिकारियों से, साथ ही साथ प्रांत के विभिन्न जिलों से आए किसानों से जो अपने उत्पाद लेकर इस महोत्सव में आए हैं और अपने आम का बिक्री कर रहे हैं। क्या है इनके अनुभव और क्या है इस आयोजन का विशेषता, क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं। अभी इस मेला में हमारे साथ सहायक प्रबंधक नाबार्ड से श्री परमेश कुमार जी जुड़ रहे हैं। क्या है सर इस बार के आयोजन के मूल में, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है?
2: ये आम महोत्सव 2026 नाबार्ड द्वारा पहला बिहार में एक आम महोत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी नाबार्ड के परियोजना चल रही है बिहार के अलग अलग जिलों में, उन जिलों के जो किसान है, खास करके नाबार्ड की परियोजना आदिवासी किसानों के साथ होता है, तो वो किसानों के खेतों में जो फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उन फलों को हम उन जगहों से यानी गांवों से शहर तक डायरेक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो जो यहां पे हमें फल मिलते हैं वो ज़्यादा दामों पे मिलते हैं और बहुत केमिकल यूज होते हैं उसमें पकाने के लिए। जो हमारे किसानों के फल हैं वो रसायन मुक्त हैं, कार्बाइड फ्री हैं, सीधा पेड़ से पके हुए हैं, नेचुरली पके हुए हैं और इसका यह भी एक फायदा है कि किसानों को कोई मिडल मैन के बीच नहीं आना पड़ता, डायरेक्ट वो एक अच्छा दाम पा सकते हैं शहर में आके उन्हें बेच के, और शहरी जो ग्राहक है उनको भी फायदा है एक अच्छी क्वालिटी का आम पाकर।
1: क्या बात है, मतलब ये सच एक कहावत है कि आम के आम और गुठली के भी दाम दोनों ही मिल रहा है, उत्पादक को भी अच्छे मुनाफे भी हो जाए और जो उपभोक्ता है उन तक सही मिल जाए उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और सही चीज मिल जाए, इसमें नाबार्ड एक सेतु का काम कर रहा है। तो ये नाबार्ड जो है उत्पादकों को किस तरीके से मदद पहुंचाता है?
2: नाबार्ड हमारे किसानों को सीधे रूप से बहुत तरीकों से मदद करता है। नाबार्ड के हर बिहार के जिलों में परियोजनाएं चलती हैं जो कि लघु और सीमांत किसानों के लिए ही काफी फोकस्ड होती हैं। ये जैसे फलदार वृक्षों का काम, जल संरक्षण का काम, मृदा संरक्षण का काम, उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, तो ये सब चलते आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। इन तरीकों से हम इनको मदद करते हैं, इनके आजीविका बढ़ाने के लिए इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ इनको एक मार्केट सप्लाई में भी हम हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी उपज को बेच पाए मार्केट में अच्छे दामों पर।
1: अभी यहाँ मेला में हमारे साथ एक और सहायक प्रबंधक

0: हैं, नाबार्ड से ही जुड़े हैं आप। आप हैं श्री दिव्यांशु द्विवेदी जी। सर, जो ये आयोजन हुआ है आम महोत्सव 2026 और जिसके आयोजक के रूप में नाबार्ड है, तो किस उद्देश्य के साथ नाबार्ड इस तरह का आयोजन कर रहा है?
1: देखिए, जो कृषि और गैर कृषि विकास जो है ये नाबार्ड का सबसे अहम प्राथमिकताएं रहती हैं, तो उसी कृषि जो हमारे नाबार्ड कृषि रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, ट्राइबल डेवलपमेंट हो गया, तो उनके जो किसान हैं, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट में हम लोग वाडी परियोजना रहती है, उसमें जो किसानों ने आम उगाए हुए हैं या जो नाबार्ड के द्वारा कृषक उत्पादक संघ जो प्रमोट किए जाते हैं उनके द्वारा जो आम उगाए गए हैं, उन सभी को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए इस मेला का आयोजन किया गया है।
0: इस बार इस आयोजन में कितने किसान भाग ले रहे हैं और किस किस जिला से आए?
2: इस बार बताना चाहूंगा कि बिहार के लगभग सभी आदिवासी क्षेत्र के जिलों से आए हुए हैं, वो हो गया वेस्ट चंपारण, नवादा, कैमूर, या फिर हमारा पूर्णिया, या फिर हमारा नवादा, इन सभी जिलों से आए हुए हैं, और साथ ही साथ बाहर के जिलों से भी आए हुए हैं जो कि झारखंड में है, जैसे हजारीबाग, देवघर। तो सभी जो आदिवासी क्षेत्र वाले सब जिले हैं उन जिलों से हमारे किसान आए हुए हैं।
0: जो किसान दूर दराज से आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, तो उन्हें और क्या क्या फैसिलिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं?
2: यह पूरा फैसिलिटी नाबार्ड द्वारा ही उठाया गया है, उनको बस यहाँ पे आना है, उनके आने जाने रहने सब चीज़ों का नाबार्ड द्वारा देखा गया है, बस उनको यहाँ पे आना है, अपने आम को सेल करना है, जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है वो सीधे किसानों को ही मिलेगा।
0: क्या बात है।
3: आज मैं यहाँ पे आम महोत्सव में आई हूँ जो कि नाबार्ड द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आम हैं उपलब्ध, जो कि कई सारी वैरायटीज हैं, जो कि नेचुरल फार्मिंग से हैं, केमिकल फ्री हैं। सभी से अनुरोध होगा कि कृपया यहाँ पे आए और तरह तरह के आमों का लाभ उठाएं। मैं कनुप्रिया, सहायक प्रबंधक नाबार्ड।
0: अब आइए मेला में हम आपको मिलवाते हैं कुछ किसानों से जो अपने प्रदेश के या झारखंड से भी कई जिलों से यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने उत्पाद के साथ, और तरह तरह के यहाँ आम हैं। अभी हमारे साथ एक किसान जुड़ रहे हैं, आपका क्या नाम हुआ?
4: हमारा नाम जगन्नाथ सिंह है, घर मेरा दनिया है, नवादा जिला पड़ता है, और इसमें कोई तरह का बाजारू दवाई नहीं है।
0: कौन कौन आम है इसमें?
4: इसमें है मालदा है, अमरपाली है, लोकनायक है, 3 आइटम का आम है
0: जी। क्या रेट में बेच रहे हैं?
4: अभी 50-60 तक के बेच रहे हैं।
0: हाँ, खरीदार आ रहे हैं?
4: हाँ, बेच रहे हैं अभी।
0: ये नाबार्ड का जो आयोजन है कैसा लग रहा है? इस तरह के
4: बहुत अच्छा
0: लगा, और मंच मिलना चाहिए किसानों,
4: बहुत मौका, बहुत अच्छा लगा, इससे हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं।
0: मेला में कुछ महिला किसान भी हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका?
5: भुखरी देवी।
0: भुखरी जी, आप कहाँ से आई हैं?
5: झरनवा से आए हैं।
0: कौन सा आम लाई है?
5: मालदा है, अमरपाली है।
0: तो ये आप अपने बगीचे में उत्पादन किए हैं?
5: अपना बगीचा में उत्पादन किए हैं।
0: हाँ, तो इसमें कौन सा खाद डालती हैं?
5: केचुआ खाद, जैविक खाद। वही
0: इसको पकाने में कुछ केमिकल वगैरह भी
5: नहीं डालते हैं? कुछ नहीं डालते हैं।
0: तो कैसे पक जाता है?
5: वो पेपर में ढक करके बेथिम दे दिया, कार्टून में ढक तब पक जाता है, गाछों में पक रहा है।
0: कैसे बिक रहा है आम?
5: अभी 50 है, 60 है, 70 है, इसी तरह बिक रहा है, जैसा आम वैसा रेट है।
0: पटना आके आपको कैसा लग रहा है यहाँ बेच के?
5: अच्छा लग रहा है, कभी भी ना आया, लेकिन हम यही पर जुड़े हुए तो हम बतना तो पहुँच गए। अच्छा लग रहे हैं।
0: अब हमारे साथ एक और किसान भाई जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे इनका अनुभव और मेला और इनके उत्पाद के बारे में।
6: मेरा नाम राजेश कुमार है, मुंगेर जिला के हवेली खरबूर प्रखंड से आए हुए हैं, और हम यहाँ 5 प्रकार के आम महोत्सव में अपने बगीचे का आम लाए हुए हैं, जिसमें मेरा मालदा आम है, मल्लिका है, अम्रपाली है, और स्वर्णरेखा है। तो और एक आम हम लाए हुए थे, वो तो आम समाप्त हो गया, बेल खास। और कल के मेला में तो मेरा आम यहाँ मान के चलिए कि लूट हो गया, सबसे ज्यादा बिका मेरा स्वर्णरेखा और मल्लिका, स्वर्णरेखा और मल्लिका इतना बिका कि हम दे नहीं पाए, सारा आम मेरा समाप्त हो गया।
0: क्या खास है स्वर्णरेखा का? और
6: स्वर्णरेखा आम बहुत, पहले तो देखने में बहुत खूबसूरत है, उसके बाद उसका स्वाद है बहुत अच्छा है, और हमारे सबौर यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है और देखने में बहुत खूबसूरत है। और ये नाबार्ड का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हम लोग को यहाँ तक लाने में सहयोग किए। हम लोग तो देहात में ही आम बेचते थे, व्यापारी लोग ले जाते थे, कम रेट में ले जाते थे, और बाजार तक तो हम लोग जा नहीं पाते थे।
0: तो यहाँ आने जाने में नाबार्ड ने आपको सहयोग किया?
6: बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत सहयोग किया हम लोग को यहाँ लाने में, रहने का स्थान दिया, जगह दिया, इसलिए हम नाबार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: धन्यवाद।
7: मेरा नाम हीरालाल कुमार महतो हुआ, हम झारखण्ड हजारीबाग विष्णुगढ़ से आए।

0: हुए हैं और हम लोग को नाबार्ड के द्वारा टिडिया बाड़ी लगाया गया था, वो किसानों को उत्पाद नाबार्ड के जो आम हम लोग लगाए उसी का उत्पाद यहाँ आया हुआ और प्योर जैविक है।
1: मेरा नाम संगीता सिन्हा हुआ, अभी मैं गया बाराचट्टी से आया है और हम लोग अपना गाछ मिला था नाबार्ड से, हम लोग अपना लगा है। मेरे पास अभी मालदा या जरदालू आम था, जरदालू निकल गया, कुछ मालदा बच रहा है और हम लोग के यहाँ पे आम मौसम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब किसान से मिले और सर सर से मिले, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है।
2: जी सर, हम मनोज, मेरा नाम है और हम कैमूर भगुआ बिहार के रहने वाले हैं। वहाँ नाबार्ड के द्वारा जो है वाड़ी परियोजना चलाया गया था, जिसमें जो है पूरा 500 एकड़ में जो है प्लांटेशन काम हुआ था। इसमें हमारे यहाँ जो है आपका ये मालदा, जिसे लंगड़ा भी कहा जाता है, और दशहरी, आम्रपाली, स्वर्णरेखा, ये चार तरह का आम लगाया गया था। तो हम लोग अभी जो है यहाँ पर नाबार्ड का जो आम महोत्सव जो लगा हुआ है, इसमें अभी लंगड़ा और दशहरी आम लाए हुए थे। तो 4 क्विंटल लगभग में हम लोग दशहरी था, जो 4 क्विंटल जो है माल खत्म हो गया, लगभग में 1.5 केजी बचा होगा, वो अभी किसी का जो है रखा हुआ बेच दिया गया है, लेकिन जो है खुले के चला जाएगा जो अभी। और मालदा भी ये हम लोग जो है 10 क्विंटल आए हुए थे, तो लगभग जो है अभी 3-4 क्विंटल के आसपास बचा हुआ, बाकी सब माल हम लोग निकल गया है। और नाबार्ड का जो प्रयास रहा है इसमें, इससे जो है हम लोग काफ़ी जो है विकसित हुए हैं। जो किसान बंजर हुआ करता था, जहाँ किसी तरह का कोई खेती नहीं हुआ करता था, वहाँ पर जो है बगीचा लगाकर नाबार्ड के माध्यम से वाड़ी परियोजना के अंतर्गत जो है वहाँ पर जो है हम लोग किसान जो है लाभित हो रहे हैं।
3: तो इस आयोजन में आकर आपको कैसा लग रहा है?
2: सर, बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि जो है एक प्लेटफॉर्म मिल गया सर हम लोग।
3: कितने लोग आपके साथ आए?
2: सर, हम लोग जो है पूरे 5 लोग हैं सर।
3: 5 लोग आपके परिवार से?
2: नहीं सर, जो हम लोग किसान हैं सर। जी सर, जी सर।
3: तो सबको रहने खाने का सारा इंतजाम?
2: जी सर, जी सर, जी सर।
3: इसी तरह की कोई परेशानी?
2: कोई परेशानी नहीं सर, हम लोग को यहाँ खुशी मिली कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म मिल गया।
4: मेरा नाम इंद्रमणि प्रसाद, मैं वेस्ट चंपारण रामनगर प्रखंड दून क्षेत्र से आए हुए हूँ। मेरे यहाँ नाबार्ड के TDF प्रोजेक्ट चलता है, मेरा FPO है, FPO बनाए हुए हूँ। मैं इस मेला में आम महोत्सव में अपने क्षेत्र के आम लेकर आया हूँ, मालदा जरदा।
5: जी सर, हम जम्मू जिला के सिमुरतला क्षेत्र से आए हैं और हमारे पास अभी मालदों का आम है, जो हमेशा वो मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है सिमुरतला, और उस पहाड़ी क्षेत्र से किनारे पूरा आम का बगीचा है और उसी का मालदो आम है सर। अभी हम लाए हैं यहाँ जब मेला में।
3: मालदा किस तरह का है? 2 तरह का मालदा रखे हैं
5: ऐसे भी, यहाँ दुधिया मालदो है सर।
3: जी, ये सामान्य मालदा और दुधिया मालदा में क्या फर्क होता है?
5: इसे दुधिया मालदे में थोड़ा उसका वेरायटी अलग रहता है, उसका खाने में थोड़ा उसका स्वाद टेस्ट अलग रहता है।
3: तो ये नाबार्ड का जो प्रयास है आप किसानों के लिए डायरेक्ट मंच और डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ने का, यह कैसा है?
5: बहुत अच्छा, पहली बार हम लोग यहाँ आए इस मौसम, आम का मौसम में बहुत अच्छा लगा। इससे किसान को भी और इससे कुछ जानकारी मिलेगा गांव के, इतना
3: मतलब खरीदार और विक्रेता के बीच में कोई तीसरा नहीं है, डायरेक्ट आप बेच रहे हैं राजधानी में, शहर तक अब आपकी पहुँच हो रही
5: है। जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ तक पहुँचे पहली बार। धन्यवाद।
6: यह महोत्सव केवल आमों का उत्सव नहीं है, बल्कि ग्रामीण समृद्धि, जनजातीय सशक्तिकरण और किसान उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का एक सशक्त मंच बना है। नाबार्ड आम महोत्सव 2026 में भारी संख्या में स्थानीय लोग, अधिकारी, कर्मचारी यहां से आम की खरीदारी कर रहे हैं और आम का लुत्फ ले रहे हैं, साथ ही साथ सीधे किसानों से संवाद भी कर रहे हैं और आम की विशेषता और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ नाबार्ड आम महोत्सव 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की।
7: अभी आप सुन रहे थे नाबार्ड आम महोत्सव 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, वाचन, संकलन, संपादन एवं प्रस्तुति हरेंद्र आजाद की। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
7: ये ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे

0: हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार

0: व्यापार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन

0: AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और US ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विजन को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विजन दस्तावेज का आगाज किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने ये कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर यकजा हों।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वजीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मालियत की 2,09,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान अवामी शिरकत से एक अवाम उन्नास की तहरीक बन गया है। वजीर आजम मोदी ने यह बात समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात के वजीर मुमलिकत BL वर्मा का एक मजमून शेयर करते हुए कही, जो नशे से मुक्त भारत की तामीर की अहमियत पर तहरीर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हर एक शहरी पर जोर दिया। जनाब वर्मा ने अपने मजमून में तहरीर किया है कि हुकूमत मंशियात की लत को एक हसास मामला समझती है, जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाबते 1945 में तरामीम की तजवीज की है। उनका मकसद मुआइने, टेस्ट करने या तजिया करने के लिए इजाजत हासिल करने वाले जाबतों को सहल बनाना है। वजारत ने कहा कि तरमीम में तमाम तरह की अद्वियात को तजजिया जाती और गैर क्लिनिकल टेस्टिंग मकासद के लिए कम मकदार में दरामद करने के लिए मंजूरी पर मबनी एक निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। सहल करदा जाबतों का इतलाक उन बहुत सी अद्वियात पर नहीं होगा जिनका ताल्लुक जिनसी हारमोन्स, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स से है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद को तैनात करने और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती

दे सीटा के फवायद को ज्यादा से ज्यादा करने में मदद करना है। आज लंदन में 10वीं सालाना बरतानिया भारत वीक से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत बरतानिया की शराकत दारी रवायती तिजारत से कहीं ज्यादा वसी हो गई है, जो टेक्नोलॉजी, सॉवरिन AI, अहम मादनियात, दिफा और साफ तवानाई जैसे जामे शोबों का अहाता करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में फ्रेजाइल 5 से निकल गया है और इसे दुनिया के सबसे

सालाना बरतानिया भारत अवार्ड 2026 में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को एक बुलंदी पर ले जाने में कायदाना रोल अदा करने पर खुसूसी इनाम से नवाजा गया। जनाब गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि ये एजाज़ हुकूमतों, सनतों, माहरीन तालीम, सकाफत और अजीम भारतीय बिरादरी की मरहून मिन्नत है जो भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में सरगर्म हैं। वेनेजुएला में आए दो तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए हैं। कल राजधानी के नज़दीक आने वाले इन जलजलों के बाद राहत कार मलबे से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कराकास और नज़दीकी साहिली शहर ला गुआयरा में लोगों को गिरी हुई इमारतों के मलबे में से मदद के लिए पुकारते हुए सुना गया। 7.2 शिद्दत के पहले जलजले के बाद जो दूसरा जलजला आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नज़दीक थे जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी सदर रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इत्तेहाद का ये कहते हुए एतराफ़ किया है कि मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान तआवुन के जज्बे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया है। नेज़ जलजले से होने वाले शदीद नुकसान के तनाजुर में राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक़वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद का ऐलान किया जिसके तहत भारतीय फजाइया के दो C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये तैयारे जलजले के बाद राहत रसानी में मदद के लिए ज़रूरी अशिया लेकर गए हैं। हिस्पानवी जबान में अमिस्ताद का मतलब है दोस्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस इमदाद में भारतीय फौज का एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा इमदादी अशिया, दवाएं और तिब्बी आलात भी हैं जिसमें दो भीष्म क्यूब्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालात में वेनेजुएला की हुकूमत और वहां की अवाम की मदद के लिए अहदबंद है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ियों के ग्रुप से बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने उनसे भारत में रुनुमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, नेज़ भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इतफाक़ के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफ़र से भारत नेज़ भारत यूरोप शराकतदारी के इम्कान के ताल्लुक से उनकी मालूमात में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान ने दोनों मुल्कों के फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल तनाज़ियात के तस्वीर का एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इस बंदोबस्त में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC और कतर के शहर दोहा में तैनात अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान सेंट कॉम से नुमाइंदगान शामिल होंगे। जनाब वेंस ने एक ब्रिटिश न्यूज साइट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमरीका ने किसी और जंग के खतरे को कम करने की गरज से ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC के साथ एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इसी दौरान अमरीका और खलीजी तआवुन की कौंसिल GCC ने बहरीन के शहर मनामा में एक वजारती मीटिंग में अपनी जामे शराकतदारी का इरादा किया जिसमें उन्होंने इलाकाई सालमियत, ईरान के साथ सफारतकारी, शाम और लबनान में इस्तेहकाम और गजा में तामीर नौ की कोशिशों के तई अपने अहद पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और GCC वजारती कौंसिल के मौजूदा चेयरमैन बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने इस मीटिंग की मुआमिन सदारत की। मीटिंग में GCC रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदायवी ने शिरकत की। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया।
پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان

0: का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले गए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिससे शुजात, हमदर्दी और हक़ व इंसाफ के तई पाबंदी की अकदार को तहरीक मिलती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ये मुकद्दस त्यौहार माशरे में यकजहती, अमन और बाहमी इज्जत के बंधन को मुस्तहकम करने के लिए लोगों को तहरीक देता है। आशूरे मुहर्रम के मौके पर आज वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियों को याद किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दरमियान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जुनूबी मानसून ने मजीद पेशकदमी की है। शुमाल मशरिकी भारत, ज़ेली हिमालयाई मग़रिबी बंगाल और सिक्किम में इस हफ्ते के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर ये FIR दर्ज की गई है। आज अयोध्या में एक अदालत ने राम मंदिर अतियात मामले में गिरफ्तार 8 मुलजमान को अदालती तहवील में भेज दिया। इन मुलजमान को उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था। अयोध्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा के अफसर KC वर्मा ने अखबार नवीसों को बताया कि उनका रिमांड बरोज़ पीर 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। जर्मनी में मुनक़िदा ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगे हासिल किए। भारतीय शूटरों ने पिस्टल और राइफल के मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 सोने, 8 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीते और इन इनफरादी गैर जानबदाराना खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 14 तमगे हासिल किए। इटली 10 तमगों के साथ तीसरे मकाम पर रहा। बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान आज फुलर्टन में खेले जा रहे अमरीकी ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर 6 और मर्दों के सिंगल्स के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चाउटियन चेन को सीधे मुकाबले में 21-17, 26-24 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के एक और मुकाबले में कदम्बी श्रीकांत मलेशिया के ली जी जियाओ को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 5वीं दर्जे की खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चेन्नई ताइपी की तुंग सी तोंग को 21-12, 21-19 से शिकस्त दी जबकि रक्षिता ने चेन सुयू को 21-4, 21-19 से हराया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनशियात के कंट्रोल से मुतल्लिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मनशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प, स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार।
2: हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साहित्यिक साथी सुरभि का नमस्कार। श्रोताओं, ऋतुएं प्रकृति की वे सुंदर कविताएं हैं जिन्हें समय स्वयं अपने हाथों से लिखता है। कभी बसंत बनकर वे

0: फूलों की मुस्कान बिखेरती हैं, तो कभी वर्षा बनकर धरती की प्यास बुझाती है। ग्रीष्म का तेज हमें संघर्ष का पाठ पढ़ाता है, तो शरद की चांदनी मन को शांति देती है। हेमंत की ओस जीवन में ताजगी भरती है और शिशिर की ठंडक धैर्य का संदेश देती है। वास्तव में ऋतुएं केवल मौसम नहीं है, बल्कि प्रकृति के बदले भाव हैं जो हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत सत्य है और हर परिवर्तन अपने साथ एक नया सौंदर्य लेकर आता है। शब्द शिल्प के इस अंक में हमने इसे केंद्र में रखकर रचनाओं का चयन किया है। इस अंक में आपको कवि की कल्पनाओं में शब्द रूपी भीगी धरती की सुगंध मिलेगी, तो लेखकों की कलम से झड़ते पत्तों की नजाकत भी महसूस होगी। ऋतु परिवर्तन न केवल प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि साहित्य को भी नवजीवन प्रदान करता है। शब्द शिल्प हमेशा से साहित्य के विभिन्न रंगों को समेटने का मंच रहा है। ये अंक भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहां मौसम का हर रंग हर रूप रचनात्मकता के सौंदर्य में ढलकर श्रोताओं तक पहुंचता है। आशा है कि ये अंक आपके मन के मौसम को भी कुछ क्षणों के लिए साहित्य की ठंडी छांव में शांति देगा। श्रोताओं, अब इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे, अगले खंड जरा सोचिए की ओर। श्रोताओं, जिस प्रकार ऋतुएं प्रकृति के बदलते स्वरूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार पर्यावरण हमारे धरती की जीवन रेखा है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी ऋतुओं का ये अनुपम सौंदर्य भी बना रहेगा। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरे भरे वृक्ष हमें प्रकृति से प्राप्त अनमोल उपहार हैं। जरा सोचिए, ये सब न हो तो क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण आज पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव हम सभी महसूस कर रहे हैं। मौसम में अनियमित परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जल संकट और प्राकृतिक आपदाएं इसकी स्पष्ट चेतावनी है। यदि अब भी हमने इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियों को एक असुरक्षित और प्रदूषित वातावरण विरासत में मिलेगा। तो आइए, पर्यावरण संरक्षण की राह पर चलते हुए हम भी अपना अमूल्य योगदान दें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। साहित्य प्रकृति की गोद में जन्म लेता है और पर्यावरण से ही अपनी संवेदनाएं प्राप्त करता है। हमारी कविताओं, कहानियों और गीतों में नदियों की कलकल, पंछियों का कलरव, वृक्षों की हरियाली और ऋतुओं का सौंदर्य जीवंत रूप से दिखाई देता है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी साहित्य की सुंदर प्रेरणा भी जीवित रहेगी। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल प्रकृति का ही नहीं, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का भी दायित्व है, क्योंकि जहाँ प्रकृति मुस्कुराती है, वहीं साहित्य गुनगुनाता है। तो आइए, इन्हीं विचारों के साथ इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और भगवत झा अन्मेष जी से सुनते हैं उनकी स्वरचित कविता पाठ।
1: सबसे पहले एक कविता जिसका शीर्षक है बादल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, धारा से लेकर गगन तक बारिशों की लय, बरसना भी है सुनिश्चित भींगना भी तय, तम तमाया तमस है नव गर्जना का भय, भाग गए आकाश में फिर घिरे घन पागल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। दूसरा अंतरा, धारा कब से कर रही थी नित नवल मनुहार, जेठ के आते ही औचक आ गया आषाढ़, प्राणियों के प्राण प्रतिपल मांगते जलधार, छा गए आकाश में फिर रंग नव श्यामल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, वेदना के गीत गाते प्राण के आधार, गुरु पूनम के दिवस में

दे रहे बौछार, वज्रधर उद्दंड नायक प्रलय के अवतार। धा गए आकाश में फिर बज रहा मादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। बादल का वर्णन है आकाश में जिस जिस रूप में मुझे दिखाई पड़ा उसकी अभिव्यक्ति है। कौन इनका रूप गढ़ता दिवस में सौ बार, बैंगनी लल छौह आभा में भरे रसधार। कूचियों से नील नभ पर रंग देता झार, गा गए आकाश में फिर घन घनन काजल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। मीत देखे आज मैंने विप्लवी के रूप, कभी कभी बादलों का रूप बहुत विप्लवी होता है, विद्रोही। मीत देखे आज मैंने विप्लवी के रूप, जो चमकती सी लगी थी स्वर्ण वर्णा धूप। धूप में बिल्कुल अनोखा नव दुखों का कूप, खुल गया नवनील का था बंद जो सांकल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। अंतिम बंद है, कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नव गीत। कृषक मन में हर्ष का वह दे गया नव गीत, कभी लगता है विकट वह कभी लगता मीत। कभी लगता है विकल सा देख जग की रीत, प्रेमियों के नेत्र में भरकर विरह का जल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। ये हमारे बीच की विसंगतियों और विडंबनाओं का विश्लेषण। गीत का शीर्षक है आदमी।

खो गया है भीड़ में जो आदमी, बंधु मैं उस मौन का पर्याय हूँ, हूँ तुम्हारे बीच की विडंबना, आज खुद से मांगता मैं न्याय हूँ। अगला बंद।

अगला बंद है। ठहरी ठिठकी सहमी सी यह चांदनी, कुछ अधूरे प्रश्न हमसे पूछती है। हर कमल पर यंत्र युग की यंत्रणा, आज के मन को श्रद्धा सूझती है। ठहरी ठिठकी

के श्रम से जुड़ा हुआ सौंदर्य, बेटियां आगे बढ़े अच्छा करे, इसमें बेटियों के श्रम का सौंदर्य सामने लाने का प्रयास किया गया है विनम्रतापूर्वक।

बेटियां। अगला बंद देखे, बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। बेटों

जलस लिए जगत की अम्मा लागे, जगत की अम्मा जगदम्बा। बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। खुरपी कलम समझ लाजलस लिए जगत की अम्मा लागे। अगहन में

यहाँ खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। जीवन में हमें संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हमारे भीतर एक लड़ाई चलती है, तो हमारे भीतर के अंतर्द्वंद को छंद द्वारा अभिव्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है आपके समक्ष। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। माया करनित नौ चतुराई छल रही। होना था मुझको भी सोना, लेकिन मुश्किल ऐसा होना। सपनों की नौ चित्र कथानित जल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। अच्छे दिन आने वाले थे, दुख के दिन जाने वाले थे। अरमानों की सांझ सुरमई ढल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। लेकिन निराश नहीं होना है, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आशाओं को हम हेरेंगे, नया तराना फिर छेड़ेंगे।

0: आशाओं को हम हेरेंगे, नया तराना फिर छेड़ेंगे। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही, हल रही। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही, हल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही, चल रही।
1: भगवत जा अन्वेष जी से अभी आप सुन रहे थे उनकी स्वरचित कविताएं। और अब इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुनते हैं उनकी स्वरचित कहानी सब दिन होत न एक समान।
2: किसी गांव में संतोष नामक एक निर्धन व्यक्ति रहता था। स्वभाव से एकदम सीधा सादा, उसके नाम के अनुरूप उसकी प्रकृति और आचरण भी था। छल कपट से दूर अपनी पत्नी ललिता और तीन बच्चे, दो बेटियां और एक बेटा के साथ रहता था। वह अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिताजी ने दोनों बड़े भाइयों को अच्छी शिक्षा दीक्षा पढ़ा लिखा कर ठाट बाट की नौकरी दिलवा दी थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण संतोष को उच्च शिक्षा व पढ़ाई लिखाई न करवाई गई। जैसे तैसे अपनी सूझबूझ, बलबूते व कठिन परिश्रम से दसवीं अर्थात मैट्रिक तथा शिक्षण प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग जिला के महाविद्यालय से दक्षता प्राप्त तो कर ली, परंतु आगे की पढ़ाई से वह वंचित रह गया। घर परिवार में सरल व सहज होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां इसी के सिर पर लाद व मढ़ दिया गया। तीनों भाइयों के परिवार के सदस्यों का सारा बोझ इसके ही सिर पर आन पड़ा। अपने जीवन काल में न ही इसके पिता इसके साथ न्याय कर पाए और न ही नियति इसको न्यायोचित अधिकार व सुख दिला पाई। अब मरता करता भी तो क्या करता। आए वक्त संतोष की जिंदगी उहापोह व उथल पुथल से गुजर बसर होने लगी। संतोष परिवार के बोझ से दिन ब दिन धसता ही चला जा रहा था, मगर फिर भी उसके ललाट और चेहरे पर चिंता, झिझक एवं परेशानियों की लकीर व रेखाएं कंचित मात्र भी नहीं दिखाई पड़ती थी। वह दुर्दिन से दुर्दिन परिस्थितियों में भी व्यथित व दुखित न दिखता था। और उसके पीठ पीछे की सकारात्मक ऊर्जा और मनोबल के रूप में इसकी धर्मपत्नी ललिता थी। ललिता चंचल स्वभाव, कद पूरे 5 फुट, गौरवर्ण, फटे पुराने चिथड़े परिधान, उलझे उलझे केश, नग्न पैर, तीखे स्वर, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर हिसाब रखने वाली, कमासुत, अहर्निश, रात दिन देह तोड़ मेहनतकश औरत, कदापि थकती नहीं थी, नित्य निरंतर कामों में लगी रहती थी। स्वभाव व आचरण से अत्यंत सरल, सहज, शालीन स्वभाव, पतिव्रता नारी होने के साथ साथ उसे ईश्वर में अटूट विश्वास और जुड़ाव था। घर परिवार में साक्षात लक्ष्मी की मूर्त थी वह। शायद यही कारण था कि संतोष को मानसिक रूप से दुखित व व्यथित नहीं होने देती थी। संबलवन सदा सहाय रहती थी, संतोष का मनोबल सतत बढ़ाती ही रहती थी, अतिशय विपदा में भी उसे समय समर पर ढांढस बंधाती रहती थी। निश्चल, निष्कपट, सीधा, सरल व्यवहार के कारण ही संयुक्त परिवार के सभी लोग संतोष से उसके बीवी बच्चों को देखना पसंद नहीं करते थे। ऊपर से उन दोनों के सादगीपन और भोलापन के कारण उनका फायदा उठाते थे। घर का कोई भी सदस्य संतोष के परिवार से खुश नहीं रहता था, परंतु घर का चाहे कोई भी काज हो, बस ललिता को ही आवाज लगाई दी। घर के लोग एक गिलास पानी तक ललिता से ही मांगते फिरते थे। ललिता के साथ मानो नौकरानी सा व्यवहार करते थे। विकट से विकट स्थिति में जीवन यापन करने वाली अडिग नारियल की तरह ऊपर से सख्त, अंदर से कोमल ललिता ना तो कभी किसी से झुंझलाकर बोलती और ना ही कभी ईश्वर को कोसती थी। परिवार के सभी लोग ऐशो आराम से घर में रहते, परंतु ललिता हर मौसम, चाहे वह पूस की मलमली हो, ठेहुन भर बरसात या फिर भीषण गर्मी या चिलचिलाती दोपहरी, भोर में उठती, चूल्हा चौकी घर आंगन लीप पोत कर, चकाचक कर, नहा धो पूजा पाठ कर सबके लिए खाना पकाती। ललिता में एक और सुंदर गुण था कि जब तक ईश्वर की पूजा नहीं करती, तब तक मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डालती। सभी लोग खाना खा लेते जो शेष बसता खुसता व संतोष के परिवार को नसीब होता। भोर भिनसार में उठकर कांधे पर कुदाल लादे संतोष निर्जल बिना कुछ खाए भूख से तड़पता हल चलाकर घर को लौटता है, तब अपनी पत्नी ललिता को आवाज देता है। किधर हो ललिता, सुन रही हो? ललिता, अगर रसोई के चूल्हा चौका पर कुछ बचा कुचा हो तो ले आओ।

की भूख लगी है। ललिता अपने पति के थकान भरे स्वर को सुनते ही मन कचोटती हुई हामी भरती है। जी अभी लाई। थाली में सिराए मांड भात परोसती है और अंदर ही अंदर फफक फफक कर रोने का प्रयास करती है, परंतु दर्द हलकान करने वाले आंसू कोरे सुघड़ नैनों में सूख जाते हैं। ललिता खाना परोसती हुई, लीजिए स्वामी, बहुत दिनों से घर में राशन पानी नहीं है, सबको पता भी है, परंतु मास्टर साहब यानी बड़का भैया चाहे मंझला भैया के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। अगर मैं ना पकाऊं तो घर में अलग ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बस एक आपका मुख दिख जाता है कि आप खेत पर से लौटेंगे तो क्या खाएंगे। लीजिए स्वामी खाइए। संतोष ललिता के चिंता को दूर करते हुए ध्यान भटकाते हुए कहता है, अरे वाह ललिता, नए का चाउर का भात पकाई हो। ललिता तपाक से उत्तर देती है, जी हाँ, आप ताल वाले खेत में जो धान बोए थे उसी धान का नए का चाउर और डीह में जो आलू बोए थे उसका चोखा। रात दिन खेत खलिहान और अन्य अन्य कार्य कर लौटा थका हारा संतोष अन्न का पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालता है वैसे ही उसको अपना बेटा बेटी याद आते और फिर ललिता से पूछता है, ललिता बच्चों को खाना खिलाई और तुमने नहीं खाई। ललिता के मुखमंडल पर अशांति की रेखाएं, शारीरिक और आंतरिक क्लांति को भांप संतोष ने कोमल भरे स्वर में कहता है, ललिता तुम्हारे उद्विग्न और उद्वेलित भाव से सब कुछ बयां हो रहा है। देख पगली, ये जीवन रूपी चक्र है, यहाँ उतार चढ़ाव आशा निराशा सफलता असफलता सबको स्वीकार ही करना पड़ता है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे समय व मोड़ आते रहते हैं जो हमें अवसाद और विषाद की खाई में पटक ही देते हैं। ऐसे में मन अशांत रहता है, हमारे आसपास के लोग एवं सभी भौतिक चीजें तुम्हें परेशान कर हमारे सभी सुख छैन छीन ही लेते हैं, परंतु ऐसी मुश्किल हालातों में कारुणिक परिस्थितियों में हमें हमारे मन आत्मा को मजबूत और सबल प्रदान करने और बनाने की जरूरत है। ललिता तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है ना? बस उन पर ही भरोसा रखो। आज हमारा वक्त और समय भले ही अनुकूल न हो, परंतु ललिता सब दिन होत न एक समान, इसलिए तुम सत्य से मुंह मत मोड़ो और व्यक्त की सोच और पचड़े में पर अपना समय मत गवाओ। कहते समझाते थके हारे संतोष को स्वाभाविक ऊंघाई आने लगती है और फिर वह अपने हिस्से के मिले छान छप्पर की कोठरी में गुदड़ी ओढ़ कर सो जाता है। ललिता बचे खुचे अन्न को लेकर खाने बैठती है और बच्चों को अन्न के कुछ एक दाने जैसे ही मुंह में डालती है तैसे ही उसकी बड़की ननद सुनीला जो स्वभाव की बिल्कुल झगड़ी लड़ने वाली कटु कर्कश आवाज ईर्ष्या देश तो कुट कुट कर भरा हुआ देवड़ी से उद्वेग भरे स्वर में आवाज लगाती है, ललिता अरे ओ ललिता कहाँ मर गई? देखो छुट्टी पर बड़का भैया आए हैं, पैर प्रक्षालन के लिए गर्म पानी कर ले आओ और संतोष को बोलो जाकर दुकान से जलपान के लिए कुछ मर मिठाई का इंतजाम करे। संतोष की आंखों में नींद दस्तक ही दी थी कि अजी सुनते हैं बड़का भैया जी आए हैं, जाइए जलपान आदि की व्यवस्था कीजिए। ललिता उधर से चूल्हा चौकी पर कठौती में पानी गर्म कर लाती है और जरा सी देर क्या हो जाती है सुनीला उसे हजार अपशब्द खरी खोटी गालियां और बुरा भला कहती है। एक तो इतने दिनों के बाद घर आए हैं पर न जाने यह औरत किस अंतःपुर में लीन रहती है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के थाली खाकर बस सो ही रहती है। देख ललिता ऐसा रहा तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। सुनीला के तीखे शब्द बाण के प्रहार ने ललिता के कोमल हृदय को छलनी छलनी कर दिया, बेचारी को मानो काट मार दिया। वह चुपचाप भीत की भांति खड़ी खड़ी सारी जली कटी बातें सुन रही थी। संवेदनशील हृदय होने के कारण वह भाव विह्वल हो गई। उसकी आंखों में निश्चल आंसू ढुलकने ही वाले थे कि उसके बच्चों की रोने की आवाज आई। संतोष भी एक कोने में खड़े होकर भाभी की खरी खोटी चुपचाप सुन रहा था। ललिता डर के मारे टस से मस और मुंह से उफ तक न की। संतोष मन ही मन यह सोच रहा था कि दुखियारी बेचारी ललिता मेरी गैर मौजूदगी में कितनी कष्ट सहती होगी। संतोष मन ही मन बुजुर्गों की एक कहावत बुदबुदाता है, लोग ठीक ही कहते हैं कि सीधे की मुंह कुत्ता चाटता है, सीधे लोगों को ही दुनिया बुरा भला कहती और ठगती। संतोष ने ललिता से कहा, ललिता जाओ बच्चों को देखो वो कब से बिलख रहे हैं। ललिता झट वहां से चली जाती है। ऐसे ही घर परिवार आस पड़ोस को सुनते सहते हालातों को पुचकारते समय के थपेड़ों को सहते रहते हालात की आंच पर पक वक्त की कसौटी को परखते संतोष और ललिता को कई वर्ष बीत गए। संतोष के दोनों बड़े भाई भी अर्धशिक्षित मूर्ख
जाहिल क्रूर की भांति तमाशबीन बन पड़ जाते थे। संतोष के विषम परिस्थितियों में न तो कभी मददगार बने, न ही दोनों के असहाय दाम्पत्य को की व्यवस्था और लाचारी

0: यहां तक कि जब दोनों भाइयों का सारा काम काज का निपटारा, सभी लड़के लड़कियों की शादी ब्याह संपन्न हो गया, तब अंततः संतोष और ललिता को उनके भौतिक सुख सुविधाओं को छीन भिन कर मारपीट अलग कर दिया। ऐसे स्थिति में दोनों जाए तो जाए कहाँ, एक ही काल कोठरी सम घर में बारहो मास आठो पहर जैसे तैसे भूखे प्यासे गुजारा करते रहे, 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर हाथ फैलाते फिरते रहे। जिस वक्त दाम्पत्य जीवन सुख भोगना चाहिए, उस वक्त उन दोनों का नव यौवन सौंदर्य तो टहल टिकोरा आभा भगत सेवा शुश्रूषा में नौकर चौकर ज्यो व्यतीत हो जाता है। फिर भी संतोष और ललिता ने अपना मनोबल अंतर्विश्वास हौसला दृढ़ संकल्प एवं परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति स्वयं को कभी थकने हारने विचलित होने व मरने न दिया। परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल होती गई परंतु हालात की आंधी से मन रूपी मोमबत्ती को हौसले और उत्साह से बुझने न दिया। संतोष और ललिता ने हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर सदैव जीवंत रखे। जिंदगी उनके साथ 1000 दांव पेच क्यों न खेलती रही हो, पर एक कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। वह सुबह कभी तो आएगी कि उम्मीद उन दोनों के जीवन में नौ सवेरा लेकर आता है। संतोष के द्वारा लिया टीचर ट्रेनिंग प्रशिक्षण और सरकारी नौकरी की वैकेंसी खबर सुनकर संतोष का जीवन रूपिया बगिया खिलखिला उठा। वैकेंसी विज्ञापन जैसे ही आई संतोष ने फॉर्म अप्लाई किया। संतोष का अथक प्रयास और ललिता का भगवान व अपने पति के प्रति अटूट भक्ति आस्था विश्वास नित्य निरंतर पूजा पाठ का प्रतिफल क्या खूब रंग लाया। संतोष जिला के ही एक विद्यालय में शिक्षक का पद ग्रहण कर सुशोभित करता है। ललिता के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहता है। ललिता कभी हंसती और कभी रोती है। इस ललिता की आंखों में खुशी के असली आंसू के मोती झर रहे थे। ललिता के लिए उसके जीवन का यह ऐसा क्षण व पल रूपी मरहम था जो उसके संपूर्ण जीवन के चोट घाव पर मरहम लगाने का काम कर रहा था।
1: श्रोताओं, अभी आप सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुन रहे थे बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, सब दिन होत न एक समान। इसका अर्थ ये है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वास्तव में श्रोताओं, समय हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। इसलिए तो कहते हैं, आज अगर आंखों में पानी है कल होठों पर मुस्कान होगी, आज अगर राह कठिन है तो कल मंजिल आसान होगी। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। इसलिए तो कहते हैं, सब दिन होत न एक समान। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ आज के शब्द शिल्प की ये साहित्यिक यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें इस ईमेल आईडी पर feedback@aarpatna.gmail.com। और अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ साहित्यिक साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं, मुहर्रम के अवसर पर पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम शाम ए गरीबा की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। प्रस्तुतकर्ता श्री मन्नान अली, तकनीकी सहायक अलख निरंजन सिन्हा एवं मृत्युंजय।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। पेश है मुहर्रम के मौके से पटना सिटी में मुनक्किद शाम-ए-गरीबा की रिकॉर्डिंग।
2: यौम-ए-आशूरा के मौके पर

अभी आप सुन रहे थे फिजा फिल्म का ये गीत कादर गुलाम मुस्तफा के स्वर में। इस गीत को लिखा था शौकत अली ने और संगीत से सजाया था ए.आर. रहमान ने। आइए अब सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत इमरान अजीज मिलन के स्वर में। गीतकार हैं कौसर मुनीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला गीत हमने लिया है।

अगला गीत हमने लिया है दूसरा आदमी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। गीतकार हैं मजरूह और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

अगला गीत हमने लिया है फूल गुलाब का, ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं बीबी हो तो ऐसी फिल्म से, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में हमजोली फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
1: देश के नंबर

हम जोली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।